एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज सुबह की सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति धारा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत विनोद राठौड़ के स्वर में।

FM बैतूल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा। भक्ति धारा कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर का गाया ये भक्ति गीत।

0: सुरेश वाडकर के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्तिधारा अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: व्यक्तित्व की पूर्णता का रहस्य वास्तव में दानशीलता और उदार हृदयता में निहित है। ये ऐसी वास्तविकता है जिसकी ओर से साधारणतया लोग लापरवाह दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वो जीवन के वास्तविक सुख चैन से वंचित रह जाते हैं। उन्हें वो शांति और संतोष प्राप्त नहीं होता जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। धर्म ने हमें

0: हमेशा इस बात की शिक्षा दी है कि हर प्रकार की संकीर्णता से स्वयं को आजाद रखें। धर्म की आधारशिला वास्तव में हमारी आवश्यकताओं और नैसर्गिक इच्छाओं पर ही रखी गई है। कुरान में साफ शब्दों में कहा गया है, और जो लोग अपने मन के लोभ और कृपणता से बचे रहे वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। संकीर्ण विचारधारा से न केवल आदमी का जीवन कटुता और कांटों से भर जाता है, बल्कि इसके कारण बहुत से लोग सत्य को पाने से भी वंचित रह जाते हैं। इस्लाम ने हर प्रकार की संकीर्णता से बचाकर सारे संसार को संगठित रहने की सीख दी है और उसकी आवश्यकता का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इस्लाम की शिक्षा ये है कि सारे इंसान एक समुदाय बनकर रहें, जैसा कि ईश्वर ने उन्हें एक गिरोह के रूप में पैदा किया है। कुरान के अनुसार सारे इंसान एक ही समुदाय से हैं। परिवार, गोत्र आदि तो मात्र पहचान के लिए है, ताकि आदमी अपने नातेदारों का हक अदा कर सके। प्रतिष्ठा और महानता का परिचायक सदाचरण और ईश्वरायणता है, न कि वंश और कुल की श्रेष्ठता। कुरान में स्पष्ट कहा गया है, आए लोगों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक नारी से पैदा किया और तुम्हें जातियों और गोत्रों में फैला दिया, ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के निकट तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे अधिक ईश्वर का भय रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सारी खबर रखने वाला है। इस्लाम की शिक्षा है कि हम सबसे प्रेम करें, सबके शुभ चिंतक बनकर रहें, सेवा कार्य से जी न चुराएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें और बिगाड़ से दूर रहें। हम जानते हैं कि जीवन अपने पूर्ण रूप से प्रेम में प्रकट होता है। हमें परस्पर जोड़ने वाली भावना प्रेम ही है। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं, मोमिन स्नेह का आगार होता है। आपने ये भी फरमाया, खुदा फरमाता है कि मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए अनिवार्य हो गई जो मेरे लिए परस्पर एक दूसरे से मोहब्बत रखते, एक दूसरे के पास बैठते, एक दूसरे से मुलाकात करते और आपस में एक दूसरे पर पैसा खर्च करते हैं। नैतिकता और प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है कि हमारी बातचीत में प्रेम और माधुर्य घुल जाता है। नीरसता की वृत्ति से दूर रहना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद साहब फरमाते हैं, अपने भाई से हंसकर बात करना भी नेकी है। और आगे आपने फरमाया, कयामत के दिन जब कर्म का आकलन किया जाएगा, कर्म तुला में सद्वृत्ति और सुशीलता से बढ़कर कोई वस्तु भारी न होगी। निसंदेह ईश्वर अपशब्द कहने वाले को बहुत बड़ा समझता है। परस्पर प्रेम और उदारता की परिणति है कि हम एक दूसरे के शुभ चिंतक हों। सभी लोगों की भलाई और कल्याण पर ध्यान देना हमारा पहला कर्तव्य है। किसी का अहित न चाहें। आदमी का जीवन सीमित है। नफरत करने से यदि जीवन नष्ट हो जाए तो जीवन का आनंद भी समाप्त हो जाता है। ईश्वर ने हमें आदमी का रूप दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसके द्वारा निर्धारित कार्यों और महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करें। सच्चा जीवन यही है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। कलाकार है रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। कलाकार थे रविंद्र साठे और श्रीकांत पारगांवकर। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी। इसमें आज सुनते हैं मन्नू भाई दीवान और साथियों को।

0: मन्नू भाई दीवान और सखियों के गाए इस बुंदेली लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोकरंजनी अब संपन्न होता है। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं जानकारी आज की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी भोपाल से रिले होंगे प्रादेशिक समाचार 7:10 पर। क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से सुनिएगा 7:20 पर। जन उपयोगी सूचनाओं का कार्यक्रम सुबह सवेरे 7:50 पर। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह ठीक 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 8:30 पर। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 बजे रिले होगा कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पाती आपके गीत पेश होगा सुबह 10:05 पर। सखियां बहनें अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी 10:30 बजे। इसमें आज की बात का विषय है गृहिणियों हेतु संतुलित आहार एवं स्वास्थ्य टिप्स। साथ ही श्रृंखला सेहत की पोटली में चर्चा, गर्मी में महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल, कमजोरी, कारण और बचाव विषय पर चर्चा। विविध भारती सेवा मुंबई के विविध रंगी कार्यक्रमों का लुत्फ आप लेंगे सुबह 11 बजे से दोपहर 2:10 तक। आकाशवाणी भोपाल से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे दोपहर 2:10 पर और आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार 2:15। दोपहर 2:30 से शाम 5:30 तक रिले होंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारी तीसरी यानी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी युवाओं के मनपसंद कार्यक्रम युवाणी के साथ शाम 5:30। इसमें आज की बात का विषय है बच्चों की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी है। होगी श्रृंखला सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी और होगा स्तंभ अजब गजब दुनिया। होंगे रूबरू कार्यक्रम विवरण से ठीक 6:00। लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का वक्त होगा 6:05। आज इसमें कलाकार हैं सुखनंदन आहके। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 6:30 और सबरस का वक्त होगा 6:50। किसान बंधुओं के लिए 7:20 पर होगा कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इसमें आज की बात का विषय है जनगणना कार्य में सही जानकारी दे। आज श्रृंखला सामयिक कृषि कार्य का विषय है खेत की गहरी जुताई से लाभ। साथ ही होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। उठाइएगा लुत्फ चित्रा माधुरी का रात्रि ठीक 8 बजे, लीजिएगा आनंद युगल गीत का 8:30 से। रात्रि 10 बजे होगा कार्यक्रम आपकी पसंद और रात्रि 10:30 होगा पंडित कुमार गंधर्व का गायन राग शुद्ध श्याम। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। समाचार प्रादेशिक समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ और छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल

0: अमरीकी टीम बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया था। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी सांसद और प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने पत्रकारों से बातचीत में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाने के प्रयासों पर हुए विचार विमर्श का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों से शुरू किए गए जल संरक्षण के अच्छे कार्यों की बदौलत संभव हुआ है। भारत भवन के बहिरंग में आयोजित सदा नीरा जलगंगा संवर्धन समारोह को संबोधित करते हुए डॉ यादव ने कल कहा कि प्रदेश की बेतवा और पार्वती कालीसिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए दी गई मंजूरी से वृहद स्तर पर लाभान्वित होगा।
1: कई प्रकार की जल रचनाएं अपनी जो पुरानी बनी हुई है, लगभग 2 लाख जल रचनाओं पर, जिसमें नदी, नाले, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी, जल के उद्गम, वैसे तो 250 से लेकर 1000 से ज्यादा नदियां, इनका उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण के काम पूरे देश में चल रहे हैं। पूरे देश में मध्य प्रदेश जल संरक्षण के काम पे नंबर 1 पे चल रहा है। हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था ने अलग अलग जिलों वाइज इसका आंकड़ा भी जुटाया है।
0: राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि स्वस्थ समाज एवं परिवार के लिए महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है। राज्यपाल ने कल अपने जन्मदिन पर लोकभवन में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ कार्यक्रम में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि महिलाएं अपनी व्यस्त जीवन शैली में अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए समय निकालें, संतुलित आहार, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। राज्यपाल श्री पटेल के जन्मदिवस पर लोकभवन के सांदीपनि सभागार में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया था। राज्यपाल ने वहां उपस्थित महिलाओं को स्वच्छता किट भी प्रदान की और सिविल डिस्पेंसरी में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों का अवलोकन किया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने बच्चों से संवाद भी किया। चुनाव आयोग ने प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए अधिसूचना कल जारी कर दी। इसके साथ ही चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। इन सीटों पर 30 जून को मतदान होना सुनिश्चित है। ये सीटें 21 जून को खाली हो रही हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा 22 मई को कर दी थी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में पीएम ई बस सेवा और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना में बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर क्षेत्र से शुरू किया जाएगा। इंदौर क्षेत्र के तहत इंदौर संभाग के समस्त जिले तथा इंदौर स्थित अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड अब पूरे इंदौर संभाग से प्रारंभ होने वाली बसों के कार्यक्षेत्र में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत 3 श्रेणी की बसों का संचालन जुलाई महीने में शुरू करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह और मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अब रुख करते हैं मौसम का। मौतपा का आज 9वां और आखिरी दिन है। हालांकि उत्तर भारत के साथ ही प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम केंद्र के अनुसार भोपाल, इंदौर, देवास और सीहोर समेत प्रदेश के 46 जिलों में कल तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम केंद्र ने आज भोपाल के साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्णा समेत 40 से अधिक जिलों में आंधी, गरज चमक, बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी है। वहीं खंडवा कलेक्टर ने बारिश में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी विभागों को अग्रिम तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। अब करते हैं खेलों की खबर का। एशियाई खेल 2000

26 से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कहा कि इन खिलाड़ियों को योजना में शामिल करने का उद्देश्य केवल पदक जीतने की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं बल्कि विभिन्न नौका श्रेणियों में सक्षम समूह तैयार करना है। चयनित समूह अब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। वहीं जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने पूल ए के मुकाबले में कोरिया को 4-1 से हरा दिया। भारत पूल ए में जापान और कोरिया के साथ 6 अंकों की बराबरी पर आ गया है। पूल की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टा शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एक खदान का पट्टा निरस्त कर दिया है जबकि दो खदानों पर जुर्माना लगाया है। झाबुआ जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 28 जून को जिले के सभी पोलियो बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। गुना कलेक्टर ने कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु होने पर मृतकों के आश्रितों को 12 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। डिंडौरी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूंगो ने कल विकासखंड बजाक के गांव चाड़ा सिलपड़ी पहुंचकर मिलेट्स एम्बेसडर लहरीबाई के 150 बीज भंडार केंद्र का अवलोकन किया। छतरपुर जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। 30 दिन तक चले इस महाअभियान में संबंधित डेटा को डिजिटल माध्यम से एकत्रित किया गया। सागर संभाग कमिश्नर ने स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए दमोह पन्ना के सीएमएचओ को नोटिस जारी करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने ओंकारेश्वर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने कल एक बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर बनी सहमति। मध्य प्रदेश जल संरक्षण और जल संचयन के कार्यों में देश में अग्रणी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। प्रदेश में सबसे पहले इंदौर संभाग से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा में बसों का संचालन। और भोपाल के साथ ही झाबुआ छिंदवाड़ा समेत प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। अब प्रस्तुत है क्लासिक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से, और आज लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हमसफर मुकेश शेषकर। तो अब चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं 1965 में रिलीज जौहर फिल्म्स के बैनर तले बनी जौहर महमूद इन गोवा फिल्म का गीत सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। अल्फाज खमर जलालाबादी के हैं और मौशिकी कल्याण जी आनंद जी की।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: यादों के झरोखे से कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं 1969 में रिलीज फिल्म विश्वास का गीत सुमन कल्याणपुर और मनहर उदास की आवाजों में। बोल गुलशन बावरा के हैं और धुन बनाई है एक बार फिर कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया 1969 में रिलीज फिल्म अनजाना का गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

आइए अब सुनते हैं सजा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बोल एसडी बर्मन के हैं और धुन बनाई है साहिर लुधियानवी ने।

सुनते हैं 1957 में रिलीज फिल्म रानी रूपमती का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल भरत व्यास के हैं और धुन बनाई है एसएन त्रिपाठी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी है एक और गीत की गुंजाइश, तो सुनते हैं 1952 में रिलीज बैजू बावरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, अल्फाज शकील बदायूनी के और मौशिकी नौशाद की।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब संपन्न होता है। अपने रेडियो हमसफर मुकेश शेषकर को दीजिए विदा। नमस्कार। एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे।
1: सुबह सवेरे
2: आकाशवाणी बैतूल पर दे विज्ञापन और पाएं अपने उत्पाद या सेवाओं का अभिवादन।
3: जन्मदिन, रिटायरमेंट, शादी की सालगिरह या हो कोई शैक्षिक उपलब्धि या किसी दिन विशेष की देना हो बधाई, तो आकाशवाणी बैतूल है ना भाई।
4: मेरे साथ साथ आसमान से आगे चल, तुझे पुकारता है तेरा आने वाला है।
2: ये बात ना जाना भूल कि विज्ञापनों के लिए आना आकाशवाणी बैतूल।
3: अपने विज्ञापन, प्रायोजन या प्रचार प्रसार के लिए हमसे संपर्क करें और पाए विज्ञापनों की डायरेक्ट बुकिंग पर आकर्षक छूट और बोनस विज्ञापन भी।

0: हमारी विज्ञापन दरें हैं बहुत ही कम और प्रचार भी ऑन बैतूल FM।
1: तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें कार्यक्रम अनुभाग आकाशवाणी बैतूल कॉलेज रोड पर।

आइए अब डालते हैं कुछ स्थानीय सूचनाओं पर नजर। पहले सुनिए ये सूचना जानकारी। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे ने जनपदवार की। बैठक में उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण संरचनाओं के प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्पर्श एवं जल गंगा संवर्धन अभियान में प्राप्त आवंटन के विरुद्ध विधिवत भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने रैन वाटर हार्वेस्टिंग, स्टाप डैम, सिरपुर मॉडल और डोहा पैटर्न के प्रगति कार्यों की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने जिला खनिज मद से पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में सभी जनपद सीईओ को आगामी 3 दिनों के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रगति नहीं दिखाई देने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नियमित फॉलोअप लेकर प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति लाने तथा स्वीकृत आवासों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। भैंसदेही, चिचोली, बैतूल एवं शाहपुर जनपद में 50% तक प्रगति नहीं होने की स्थिति में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पीएम आवास के वेतन आहरण पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए। पेयजल प्रबंधन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने आगामी 15 दिनों में पानी आपूर्ति संबंधी समस्याओं का गंभीरता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवीन आंगनवाड़ी भवनों की जनपदवार समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी निर्माण कार्य जून माह के अंत तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही पंचायत एवं जनपद मद से जर्जर स्कूलों और आंगनवाड़ी भवनों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने ग्राम पंचायतों के विद्युत देयकों का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने तथा पंचायतों के विद्युत कनेक्शनों को ऑडिट कराकर वाजिब भुगतान करने के निर्देश दिए। सभी पंचायतों में उपलब्ध राशि के व्यवस्थित उपयोग के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश ब्लॉक कोऑर्डिनेटर SVM को निर्देश दिए। वॉश एंड व्हील कार्यक्रम के अंतर्गत पानी की टंकियों की सफाई में कम प्रगति पाए जाने पर आठनेर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी किया गया। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने वित्तीय गबन के प्रकरण में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने तथा मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में श्रम विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी जनपदवार समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉक्टर सोनवणे ने संबल पंजीयन के लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। 100 दिनों से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का 100% निराकरण करने के तथा अनुग्रह सहायता के लंबित मामलों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित सभी जनपद सीईओ एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

0: सवेरे।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। सुबह के 8 बजने ही वाले हैं, समाचार प्रभात अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया।

0: और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउं लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउं लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
4: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
5: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
3: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की

0: बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
3: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अभी रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता

0: प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में दो पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान

0: दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्न की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउं क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Sites, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under-18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम

0: महिला पायलट सरला ठगराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साह वर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल?
0: हम्म,
1: ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो
1: जी
0: अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के

0: कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुश

0: چهال رہا۔
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
2: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
3: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
2: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
3: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
2: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए। लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
0: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो चलो, अरे पकड़ो, चलो चलो, मुझे
5: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
4: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
1: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
1: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया

0: कहा,
1: लुई पास्चर
2: सर,
1: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
2: कहिए सर।
1: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
2: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
1: ठीक है।
3: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
3: पास्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
3: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पास्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पास्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
3: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पास्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
3: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पास्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
3: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पास्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे

0: सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
2: सर सर ये टेलीग्राम।
0: अच्छा लाओ दिखाओ।
3: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
2: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
2: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
2: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
4: इस समय तक भी पास्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: ये आप,
5: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
4: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
4: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
4: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं

0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माय ग्रैंडफादर वाज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वाज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आज रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में होगा पंडित कुमार गंधर्व का गायन राग शुद्ध श्याम एवं भूपाली। रात्रि 11:10 पर होगा आकाशवाणी दिल्ली से रिले कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई से विविध रंगी कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है चित्रलोक। लीजिए मुंबई एक्सप्रेस फिल्म का गाना सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल और शान की आवाजों में, देव कोहली के बोल और संगीत इलैयाराजा का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों, आज संगीतकार इलैयाराजा का जन्मदिन है, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं। संगीतकार, संगीत रचयिता, संगीत संयोजनकर्ता, कंडक्टर, ऑर्केस्ट्रेटर, बहुवाद्य यंत्र वादक, गीतकार और पार्श्व गायक हैं वो। और मुख्य रूप से उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों के लिए कार्य किया है और उन्हें विपुल संगीतकारों में से एक माना जाता है। 39 वर्षों से अधिक के अपने करियर में उन्होंने 8600 से अधिक गीतों की रचना की। 9 भाषाओं में लगभग 1523 फीचर फिल्मों के लिए उन्होंने संगीत दिया है और लोग उन्हें प्यार से मास्टरो कहते हैं। तो एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। और अब शमिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत इलैयाराजा का।

इलैया राजा के संगीत निर्देशन में शमिता फिल्म का ये गाना आपने सुना और चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक ब्रेक का।

ब्रेक के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और रंजीत बारोट की आवाजों में होलीडे फिल्म का ये गाना, नीलेश मिश्रा और महबूब का लिखा हुआ ये गाना है, और इसमें जो संगीत है वो रंजीत बारोट का है।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आज के चित्रलोक कार्यक्रम का आखिरी गाना वेलकम टू सज्जनपुर, इस फिल्म का गाना मोहित चौहान और मधुश्री की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल शांतनु मोइत्रा का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

मणिरत्नम का शुमार सिनेमा की उन प्रतिभाओं में होता है जो फिल्म के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से अपनी बात कहना जानते हैं। यूं तो मणिरत्नम का ताल्लुक दक्षिण भारतीय सिनेमा से है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि भारत और भारत के बाहर भी है।

1956 में मद्रास यानी चेन्नई में जन्मे मणिरत्नम ने अपनी पढ़ाई मद्रास यूनिवर्सिटी में की और उसके बाद मुंबई के बजाज इंस्टीट्यूट से ली मैनेजमेंट की डिग्री। फिल्मों की दुनिया में आने से पहले मणिरत्नम एक प्रबंध सलाहकार थे। मणिरत्नम के पिता गोपाल रत्नम और भाई वेंकटेश्वरन भी फिल्म निर्माण से जुड़े हुए थे। जाहिर है ऐसे में फिल्म माध्यम से उनका लगाव होना स्वाभाविक था।

उनकी पहली फिल्म कन्नड़ में थी, पल्लवी अनुपल्लवी। इस बीच उनकी तेलुगु और मलयालम में भी फिल्में आईं, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं। मणिरत्नम सिनेमा की दुनिया में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहे 1986 में फिल्म मौनारागम बनाकर। इसके सितारे थे मोहन, रेवती और कार्तिक। मणिरत्नम की अगली फिल्म थी गॉडफादर से प्रभावित नायकन, जो 1987 में आई। इस एक फिल्म ने आभास दे दिया कि मणिरत्नम आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण और निर्देशन के नायक बनने वाले हैं। इस फिल्म ने जहां प्रतिभा के धनी कमल हासन को दिलाया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, वहीं मणिरत्नम को इस फिल्म ने पहुंचा दिया सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों की पंक्ति में।

1988 में आई अग्नि नक्षत्रम जिसने तमिल सिनेमा को दिया सिनेमा का एक नया विजुअल स्टाइल, 1989 में मणिरत्नम लेकर आए गीतांजलि और फिर 1990 में आई उनकी एक दिल को छू लेने वाली फिल्म अंजलि। लेकिन पूरे भारत में मणिरत्नम को ख्याति दिलाई कश्मीर के आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर बनी एक लव स्टोरी रोजा ने।

1993 में निर्मित थिरुडा थिरुडा नाकाम रही, लेकिन ठीक दो बरस बाद मुंबई के दंगों की पृष्ठभूमि पर मणिरत्नम ने बनाई फिल्म बॉम्बे।

राजनीति में अपने लगाव के चलते मणिरत्नम ने 1997 में बनाई एरुवर और फिर 1998 में उत्तर पूर्व की समस्या को लेकर बनाई हिंदी में दिल से।

मणिरत्नम की गिनती भारतीय सिनेमा के बेहद सम्मानित फिल्मकारों में होती है। उनके कथोपकथन में बारीकी और गहराई दोनों होती है। मणिरत्नम की फिल्मों का गीत, संगीत और नृत्य पक्ष भी प्रभावशाली फिल्मांकन के लिए हमेशा चर्चा में रहा है। 2004 में बनी युवा कभी नहीं।

सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए मणिरत्नम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित और पुरस्कृत किया जा चुका है।

0: आज की फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार मणिरत्नम पर। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: 2 जून सगी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में
1: आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का है, वाचन स्वर है अभिषेक खटियार का। जबलपुर जिले में नौतपा की शुरुआत हुई, जहां भीषण गर्मी ने रौद्र रूप दिखाया था और तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। वहीं अब इसके जाते जाते तेवर कुछ ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। जबलपुर और आसपास के जिलों में पिछले 3 दिनों से मौसम सामान्य बना हुआ है। तेज गर्मी का असर पहले की तुलना में कम महसूस किया जा रहा है। आकाश में हल्के बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तीव्रता कम हो रही है, जबकि रात में ठंडक महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी मौसम लगभग इसी तरह बना रह सकता है। दोपहर में हल्की गर्माहट और सुबह शाम मौसम रह सकता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बीते दिनों जबलपुर के भंवरताल उद्यान में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। युवाओं, विद्यार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से तंबाकू सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक नुकसान को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में शासकीय रानी दुर्गावती नर्सिंग महाविद्यालय और हितकानी डेंटल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसके समापन पर सभी ने तंबाकू और निकोटीन उत्पादों से दूर रहने और जन जागरूकता प्रसार करने का संकल्प लिया। जबलपुर जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाएगा। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवीन कोठारी के निर्देशों पर कोटपा अधिनियम के तहत बस स्टैंड, अस्पताल, शासकीय कार्यालय, स्कूल कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बीते दिनों जबलपुर में फ्रेगमेंटेशन प्रिफ्यूजन एम्पावरिंग जस्टिस वाया यूनाइटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने देश का पहला एकीकृत डिजिटल न्याय मॉडल प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीश भी शामिल हुए। जनगणना 2027 के पहले चरण का कार्य पूरा करने वाला कुंडम जबलपुर जिले का पहला विकासखंड बन गया है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रशासनिक समन्वय और टीम वर्क

फसल की। विकासखंड की 68 ग्राम पंचायतों के 199 गांवों में फैली 251 ईबीसी का लक्ष्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। अभियान में 187 प्रगणक और 31 पर्यवेक्षक तैनात रहे, जबकि आपात स्थिति के लिए 19 प्रगणक और 3 पर्यवेक्षक रिजर्व रखे गए थे। इससे पहले जबलपुर नगर निगम ने भी हाउस लिस्टिंग का कार्य निर्धारित समय से पूरा कर लिया। जबलपुर जिले में इस वर्ष 34,660 किसानों से 25,89,031 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों के खातों में अब तक 553 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि लगभग 126 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान प्रक्रिया में है। 28 मई तक चले उपार्जन अभियान में 36,948 किसानों ने स्लॉट बुक कराए थे। खरीदे गए कुल गेहूं में से 99.6% का परिवहन भी हो चुका है। जबलपुर के नर्मदा तटों को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के अभियान के तहत नगर निगम ने गौरीघाट, तिलवारा घाट सहित विभिन्न घाटों से चिन्हित 367 भिक्षुकों में से लगभग 85% का पुनर्वास कर दिया है। निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशन में चलाए जा रहे इस अभियान में स्थानीय भिक्षुकों को समझाइश देकर घर भेजा गया, जबकि दिव्यांग, बुजुर्ग और जरूरतमंदों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित किया गया। सक्षम लोगों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहीं गौरीघाट पर नगर निगम ने 3R के तहत रिड्यूस, रीयूज और रिसाइक्लिंग सेंटर विकसित किया है, जिसके तहत यहां पर खिलौना बैंक, पुस्तक बैंक, बर्तन बैंक और थैला बैंक की व्यवस्था भी की गई है। नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत करीब 20,000 सफाई कर्मचारी 3 शिफ्टों में सुबह 6 बजे से आधी रात तक काम करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया कि सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए विशेष टीम का गठन भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 के पहले माह में 42 मिलियन टन माल लदान कर 341 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर विशेष उपलब्धि हासिल की है। जबलपुर मंडल रेल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने बीते दिन बताया कि मंडल ने भोपाल और कोटा मंडल को पीछे छोड़कर पश्चिम मध्य रेलवे में सर्वाधिक वाणिज्यिक आय अर्जित की है। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा 15 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिले में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और जल आपदाओं से निपटने के लिए होमगार्ड विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। इस कड़ी में गौरीघाट स्थित नर्मदा तट पर 4 दिवसीय संभागीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें जबलपुर, कटनी, मंडला और नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों के 51 जवान शामिल हुए। जबलपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जबलपुर जिले की चिट्ठी। आलेख सुरभि तिवारी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: एफएम वेव 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब पेश है प्रोग्राम आपकी पाती आपके गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में पढ़ते हैं आप सभी श्रोताओं की पाती। सुहागपुर बालाजीपुरम से प्रफुल्ल मालवी, पारुल शेषराव, कविता और श्यामराव मालवी। दुर्गा चौक चारबन से संगीता सुनीता पाटिल, नीता स्मिता पाटिल, लक्ष्मी रोशनी पाटिल, सुकरा पाटिल, सोनम और प्रमिला पाटिल। आप सभी ने भेजी है पाती फिल्म मौसम के गीत को सुनवाने के लिए। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन बनाई है प्रीतम ने और आवाजें हैं शाहिद मालिया और प्रीतम।

प्रोग्राम में अगला गीत सुनने के लिए भेजी है पाती आप सभी श्रोताओं ने ग्राम नसीराबाद चिचोली से मनोज अशोक बंसकार अनिल सुनील दीपराज प्रदीप नेहा सरिता लखन सोनू संजू वर्ष और जितेंद्र ने। शास्त्री वार्ड बैतूल से प्रदीप मालवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नवनीत राय डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म दिलवाले का गीत अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाजों में। बोल अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और धुन बनाई है प्रीतम चक्रवर्ती ने। तो लीजिए सुनिए आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
2: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
4: RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: FM बैतूल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आप सभी श्रोताओं की पार्टी। तो ये पार्टी भेजी है ग्राम पाढ़र बैतूल से अमन, पवन, प्रतीक, प्रयास, यश, मोंटी और तुषार राठौर ने। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से उदयभान ठाकरे, चंद्रभागा, दीपक, नवीन, शिखर ठाकरे और ग्रंथ ठाकरे। आप सभी ने सुनना चाहा है धुरंधर फिल्म का गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह, अरमान खान और शाश्वत सचदेव ने। बोल इरशाद कामिल के हैं और धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

कार्यक्रम के आखिर में लेते हैं आप सभी श्रोताओं की पाती। अमरपुर पेंड्रा से रेखा देवी, अंजुलता, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और रुचि श्रीवास्तव। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। आप सभी ने सुनना चाहा है अफसाना प्यार का फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। बोल अनजान के हैं और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने। तो लीजिए सुनिए आप ही की ये पसंद।

इसके साथ ही प्रोग्राम आपकी पार्टी आपके गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

मौसम ने फिर ली है करवट, हवाओं का अंदाज भी बदला हुआ है। कभी धूप की तपिश है तो कभी बादलों का साया है, और इस मौसम में दिलचस्प बातों और आपके पसंदीदा गीतों के साथ हम लेकर हाजिर है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। और कार्यक्रम के इस मनभावन सफर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी स्मिता बेंजामिन। तो कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता, इन दिनों हमारे क्षेत्र में भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है, और बारिश होने की वजह से जहां गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली, वहीं बारिश के बाद उमस यानी कि हवा में नमी के कारण अब आगे गर्मी भी उमस भरी और चिपचिपी सी महसूस होने वाली है। और ऐसे मौसम में हमें थकान जल्दी महसूस होने लगती है और पसीना भी अधिक आता है, और कई बार तो बिना ज्यादा काम किए बगैर भी हमारे शरीर में कमजोरी और सुस्ती महसूस होने लगती है। इसलिए ऐसे मौसम में हमें अपनी भी और परिवार के अन्य लोगों की भी खास देखभाल करने की बहुत जरूरत होती है। और यदि बात की जाए हम महिलाओं की, तो जो महिलाएं बाहर कार्य करने जाती है उन्हें अपना ध्यान रखना तो जरूरी होता ही है, लेकिन यदि बात घरेलू

महिला की जाए तो सुबह की रसोई से लेकर परिवार के हर सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखते रखते घर के काम का संभालना और सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते रखते अक्सर वो अपनी सेहत के प्रति लापरवाही कर देती है। लेकिन बहनों, परिवार की देखभाल करने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी होता है, खासकर ऐसे मौसम में जब शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है। इसलिए आज की बात में हम चर्चा करेंगे गृहिणियों के लिए संतुलित आहार और स्वास्थ्य सुझाव के बारे में। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे घरेलू महिलाओं के लिए संतुलित आहार और स्वास्थ्य सुझाव के बारे में। बहनों, स्वस्थ जीवन की सबसे मजबूत नींव है संतुलित आहार। अक्सर हम भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन समझ लेते हैं, जबकि सही मायनों में भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा शक्ति और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अक्सर गृहिणियां परिवार के सभी सदस्यों को समय पर भोजन कराती है, लेकिन खुद खाना कभी देर से खाती है तो कभी जल्दी जल्दी खाकर काम में लग जाती है, और फिर धीरे धीरे यही आदतें उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने लगती है। बहनों, यदि आप भी स्वस्थ रहेंगी तभी पूरे परिवार की बेहतर देखभाल कर पाएंगी। इसलिए अपने भोजन और स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम दिन भर ऊर्जावान और सक्रिय बने रहे। इसके लिए जरूरी है कि हमारा भोजन संतुलित हो, और संतुलित आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हो। और ये पोषण हमें मिलता है विभिन्न प्रकार की दालों, दूध, दही, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज और मौसमी फलों से। ये न केवल शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, बल्कि उमस भरे इस मौसम में शरीर को ताजगी भी देते हैं और ऊर्जावान भी बनाए रखते हैं। सके साथ ही इस मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे, क्योंकि शरीर में पानी की कमी थकान और कमजोरी का कारण बन सकती है। इसलिए समय समय पर पानी के साथ साथ नींबू पानी, आम पना या छाछ, शिकंजी जैसे पेय पदार्थों का सेवन भी करते रहे। और बहनों, ऐसे मौसम में ज्यादा तला भुना और मसालेदार या बासी खाना खाने से बचे, और इसके साथ ही बाहरी खाद्य सामग्री का उपयोग भी ना करे। और हमेशा ये याद रखिए कि अपने परिवार की देखभाल करने के चलते अपने भोजन और सेहत के प्रति लापरवाही ना करे, और सुबह का नाश्ता जरूर करें। और हाँ, दिन भर की व्यस्तता के बीच अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, जिसमें थोड़ी देर का आराम, योगा, व्यायाम, हल्की सैर जैसी आदतों को अपनाएं, या आपकी मनपसंद गतिविधियां भी आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा बनाए रख सकती है। तो बहनों, बदलते मौसम के इस दौर में अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना ही आपके परिवार की खुशियों और मुस्कान का आधार है। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और आगाज करते हैं हमारी साप्ताहिक श्रृंखला सखियों की पसंद का, और कार्यक्रम में शामिल करते हैं आज का हमारा पहला व्हाट्सएप संदेश, जिसे भेजने वाले हमारे श्रोतागण हैं आमला भीमनगर से लीना जगताप, शोभा, पीहू, ममता, अहाना, एंजिल और इनके परिवार सदस्य। ये सुनना चाहते हैं फिल्म गोलमाल 3 से बेहद ही खूबसूरत सा गीत। और इस गीत को सुनवाने से पहले मैं आप सभी से एक और बात कहना चाहूंगी कि स्वस्थ जीवन केवल अच्छे खान पान से ही नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच से भी जुड़ा होता है। जब हमारा मन प्रसन्न हो और जीवन को उत्साह के साथ जीने का नजरिया हो तो हर दिन और भी अच्छा लगने लगता है। इसलिए हर दिन को खुशी, उत्साह और मुस्कान के साथ जीना चाहिए। इसी सुंदर संदेश को लेकर प्रस्तुत है आप ही की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओ, ये वक्त आपका और हमारा है और अब इस वक्त में बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और खोलते हैं हमारी आज की सेहत की पोटली और देते हैं आपको इस गर्मी और उमस भरे मौसम में काम आने वाले कुछ उपयोगी सुझाव जो बदलते मौसम में आपके परिवार को सेहतमंद बने रहने के काम आ सके। लेकिन बनो इस बदलते मौसम में महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से सावधानियां बरतने की जरूरत होती है क्योंकि उनका शरीर और त्वचा दोनों ही नाजुक और कोमल होते हैं और अगर हम सावधानी ना रखें तो ऐसे मौसम में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे बच्चों के शरीर में घमोरिया उठना और महिलाओं में पानी की कमी होने के कारण चक्कर, सिर दर्द या पेट संबंधी परेशानी और गर्मी के मौसम में बच्चों में लू लगने का खतरा भी होता है। इसलिए बच्चों को ज्यादा देर धूप में खेलने ना दे और उन्हें हल्के सूती कपड़े पहनाएं और समय समय पर पानी पिलाते रहे। इसके साथ आप उन्हें तरल पेय पदार्थ जैसे नींबू पानी, नारियल पानी या फिर घर पर बने शीतल पेय पदार्थ भी दे सकती है। वहीं

महिलाओं को चाहिए कि घर का काम करते समय बीच बीच में आराम भी करे और खुद को डिहाइड्रेशन से बचाए और बासी भोजन खाने से भी बचे। और बच्चों को खुले में बिकने वाले कटे फल, बर्फ या अस्वच्छ खाद्य पदार्थों का सेवन करने ना दे, क्योंकि इस बदलते मौसम में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए घर का बना ताजा भोजन और ताजा भोजन ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। और आप स्वयं भी ऐसे मौसम में घर से बाहर जाने से बचे, और यदि बाहर जाना भी पड़े तो सिर कान को ढककर आंखों के लिए काले चश्मे का प्रयोग करें, और आप छाते का इस्तेमाल भी कर सकती है। और जैसे कि हमने आपसे पहले भी कहा कि उमस और गर्मी के इस मिले जुले मौसम में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए स्वच्छता का विशेष तौर पर ख्याल रखें और अपने आसपास और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखें, और बच्चों को भी साफ सफाई रखने और बार बार हाथों की सफाई करते रहने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस मौसम में त्वचा संबंधी समस्या भी बढ़ जाती है। और मानो अच्छा स्वास्थ्य केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए, इसलिए दिन का कुछ समय अपनी पसंद के कामों के लिए अवश्य निकाले। परिवार के लोगों के साथ हंसे बोले और सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि खुश मन भी अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। तो याद रखिए, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, स्वच्छता, आराम और सकारात्मक सोच, यही है आपकी अच्छी सेहत का मंत्र। और इसी के साथ आज की सेहत की पोटली को करते हैं अब बंद और बढ़ते हैं आपके संदेशों और मनपसंद गीतों की ओर। और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा व्हाट्सएप संदेश, जिसे भेजा है एक माँ ने अपनी बेटी के प्रथम जन्मदिवस के अवसर पर, और सुनना चाहा है अपनी नन्ही सी बेटी मितांशी को समर्पित करता हुआ गीत। और हमारे ये श्रोता है बैतुल बगुडाना से हेमा साहू, भूपेंद्र साहू और इनके परिवार सदस्य, और इन्होंने अपनी लाडली के लिए सुंदर पंक्तियां भी लिखकर भेजी है। ये लिखती है, नन्हे कदमों से आई जो घर में बहार, उससे महक उठा हमारा सारा संसार। जन्मदिन पर दुआ है रब से यही, खुशियों से भरा रहे उसका हर दिन हर बार। बहुत ही सुंदर पंक्तियां भेजी है आपने हमें। और महिला जगत परिवार की ओर से भी मितांशी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म फर्ज का ये सदाबहार नगमा।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अंतराल के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम महिला जगत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओ, यदि आप भी अपने पसंदीदा गीतों को हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं या अपने सुविचार हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें खतों और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन्हें भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम महिला जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बैतूल, और हमारा पिन कोड है 4600।

एक और व्हाट्सएप संदेश भेजने के लिए हमारा नंबर है 7141234722। नंबर एक बार फिर से सुने 7141234722। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। और अब रुक करते हैं महिला जगत कार्यक्रम में कल होने वाली गतिविधियों की ओर। तो कल आपके लिए कार्यक्रम लेकर हाजिर होगी हमारी और आपकी रेडियो सखी चंचल, जो करेंगी आपसे बात एक नए विषय पर और सुनवाएगी आपको कुछ दिलकश नगमे। और साथ ही होगी कार्यक्रम में साप्ताहिक श्रृंखला हमारी बात सखियों के साथ। तो सुनना ना भूले कल कार्यक्रम महिला जगत चंचल के साथ। और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और शामिल करते हैं आज का हमारा तीसरा व्हाट्सएप संदेश, जिसे भेजने वाले हमारे श्रोतागण है बैतूल रिंक रोड से प्रीति, अर्चना, ममता और सरस्वती परते। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से ये खूबसूरत सा नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से विविध रंगी कार्यक्रम।
1: रंग तरंग के आज के इस कार्यक्रम की पहली पेशकश लीजिए सुनिए।

बरसात की रात इस फिल्म से कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों की आवाजों में, साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा था और रोशन का संगीत।

प्रोग्राम रंगतरंग में अभी आप सुन रहे थे लकी अली की आवाज में ये गीत उन्हीं के एल्बम से अक्स एल्बम का नाम था। उन्हीं का संगीत और लकी अली द्वारा लिखा गया ये गीत। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम में। दीवाना एल्बम का नाम है। साजिद वाजिद का संगीत, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा।

लकीर फॉरबिडन लाइन्स इस एल्बम से ये गीत आप वीवा की आवाज में सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा था और एआर रहमान का संगीत। रंग तरंग में ये अगला गीत लकी अली की आवाज में

गुस्ताख दिल, ये गीत अभी आप सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म से। शिल्पा राम की आवाज में अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया था और स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं। अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026

0: अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

रेशमा की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। यादों की महफिल आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

0: याद आ रहा है तेरा प्यार, बप्पी लहरी की आवाज में। ये आप डिस्को डांसर फिल्म से सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लहरी का संगीतबद्ध ये गीत था। साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि यादों की महफिल में आज वो गीत जो यादों से जुड़े हैं, जहां किसी को याद किया जा रहा है। फिलहाल आपको ये भी याद दिला देते हैं,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

0: मेहरबानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
1: भगत भारती से स्वतः आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल। ये भी सुनिए चरस फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज है, आनंद बख्शी ने इसे लिखा।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज यादों से संबंधित यादों पर आधारित गीत आपको सुनवाए जा रहे हैं।

0: कुछ दिन ने कहा। इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा, निखिल विनय का संगीत। और साथ ही आपको एक और खास बात याद दिला दें,
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: साथ ही आज की ये स्पेशल सखी सहेली को आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं, तो जरूर जुड़े हमारे साथ 3 बजे सखी सहेली में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट किया जाता है और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। और आपके प्यार भरे संदेश साथ ही गानों की लिस्ट भी मुझ तक पहुंच चुकी है जैसे कि हमेशा पहुंचती है और बहुत अच्छे अच्छे गीत आपने चुन के लिखे हैं लिस्ट में, वो मैं पढ़ चुकी हूं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो भी अपने गीतों को चुनकर वहां लिख सकते हैं, उन शब्दों को लिख सकते हैं, अपने संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें इस प्रोग्राम की, चलिए ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, गुलमोहर की डाल पर जब एक ख्वाब उतरा, फूलों ने धीमे धीमे उसका नाम पुकारा, गुलाब की लाली में कोई राज छिपा था, चमेली की महक में दिल का मौसम बसा था, गेंदा भी बहारों संग आंगन में उखिला, जैसे हर रंग को जीवन से नया रिश्ता मिल गया। एक पुरानी तस्वीर में ठहरा है किसी अनकहे प्रेम का जो पहला सवेरा है, एक नर्म सा खत हवा के संग आया था जिसमें मौसम ने तेरे जिक्र सजाया था, पूजा सी पावन सी तेरी हंसी की रोशनी जिसमें भर जाती थी मन की हर वीरानी, पलकों की चिलमन में जब नजर गुजरती थी सपनों की झालर भी धीरे धीरे सवरती थी, यादों का ये सिलसिला आज भी रंग भरता है, गुलमोहर गुलाब और ख्वाबों में रंग ठहरता है। चलिए आपके संदेश भी हम पढ़ेंगे लेकिन साथ ही शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ जहां पर रंग रंग और फूलों की बातें हैं।

0: जान मिलो सजना। जी हाँ, ये गीत आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, साथ ही आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और इसकी डिटेल्स आप मुझे भेज चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये पहला गीत था आज के इस प्रोग्राम का, और कहना पड़ेगा कि काफी सारी डिटेल्स आप हमारे जो श्रोता है हम तक लिख देते हैं, और काफी डिटेल्स में बताया कौन कौन अभिनेता है, अभिनेत्री है इस गीत में, काफी डिटेल्स हमें मिल गई। लेकिन साथ ही क्या मैं ये प्रश्न पूछने वाली मैं कुछ और पूछने वाली हूँ आपसे। फिलहाल आपके प्यारे संदेश आपको सुनवाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत फूलों की खुशबू, रंगों की छटा और प्रेम की कोमल भावनाओं का सुंदर संगम है। फूलों और यादों से सजी ये इबारत प्रेम की उस पवित्र अनुभूति को व्यक्त करती है जो समय बीत जाने पर भी मन में जीवित रहती है। एक पुरानी तस्वीर, एक नर्म खत और प्रिय की मुस्कान स्मृतियों के ऐसे दीप हैं जो आज भी हृदय को रोशन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए हम इस तरह के गीत लेकर आए हैं ताकि आप उस रोशनी में एक बार फिर से नहाएं। आज कहीं मैं पढ़ी हुई लाइन यहाँ साझा कर रही हूँ। सर, वसंत के आते ही तुमने कहा था हम साथ साथ पार करेंगे हर जंगल। मैं अब भी खड़ी हूँ उस गुलमोहर के नीचे जहाँ कोयल के कंठ में कांपता है पत्तों का पानी। तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में, न जाने कब से गुलाब उदास है। रिमझिम रिमझिम बूंदों में जहर भी है और अमृत भी। आंखें हंसती और दिल रोया तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतजार में। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर लिखा है, ये तो एक नई इबारत बन गई है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के शब्दों पर गाने सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। गुलमोहर, गुलाब और खाबों के रंगों में खो जाने का मन करता है। इस कार्यक्रम का इंतजार नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, हम आ चुके हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप बने हैं हमारे संग इस प्रोग्राम में। साथ ही हमारे एक और साथी है जो लिखते हैं कि बेहद प्यारी नज़्म से चुनिंदा शब्द उन्होंने निकाले हैं गुलमोहर दो दीवाने शहर में। उन्हें ऐसा लगता है कि इन शब्दों से आज के गीत जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो हमारी लिस्ट से मैच होती है, मेल खाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और श्रोता हमें लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, संवेदनशील और पुरानी यादों के रंगों से सजी हुई है इबारत, और समय भले ही बीत गया हो वो पल अतीत का हिस्सा बन चुके हों, लेकिन यादों का ये सिलसिला आज भी थमा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यारे से खूबसूरत मैसेज के लिए। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि आज के इस गद्यांश को गुलाब, गुलमोहर, चमेली की महक से महकाया है। गुलों की मासूमियत और भरपूर अनगिनत रंगों से उषा की लालिमा की तरह खिलने वाला नाजुक नर्म प्यार का एहसास नए सवेरे की ताजगी भरे ख्वाबों में सज कर जीवन का मेघ धनुष रच रहे हैं। वाह, कितना सुंदर लिखा है आपने। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अरे वाह, शायर है हमारे श्रोता, बिल्कुल कहना पड़ेगा। एक और साथी लिखते हैं कि फूल एक इकाई है, गुलशन एक खिला हुआ बगीचा है और गुलिस्तान एक बहुत बड़ी फूलों की भूमि या विस्तृत उपवन है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बताया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही हम फूलों की बात कर रहे हैं तो एक और ये गीत सुन लीजिए, फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पर।
1: शबा उसमें फिर मिला।

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी कंस ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश की बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है, चिलचिलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मूड भी

जी हाँ, इस नशे को प्यार कहते हैं। प्रेम पुजारी कंसे ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। नीरज ने इसे लिखा था, एस डी बर्मन की तर्ज थी और आपके बहुत से संदेश हम तक पहुंच गए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज फूल बहारों मिलन की बातें होगी। देश की बहुत सी जगह मानसून का आगमन हो चुका है, चलचलाती धूप गर्मी से राहत मिली है। बाग बगीचे और मन का मोर भी

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि बहुत ही जोरदार गाने से शुरुआत हुई आज के इस प्रोग्राम की और उन्हें अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और साथी हमारे लिखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, ये लाइन हमें रुकने पर मजबूर करती है। एक पुरानी तस्वीर या एक पुराना खत समय को एक जगह रोक देता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भले ही दुनिया आगे बढ़ जाए, हमारे दिल का एक कोना हमेशा उस सबसे खूबसूरत पल में ठहर जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम ठहर जाते हैं और ठहराव भी जरूरी है। कभी थोड़ा रुकना, थमना, ठहरना बहुत जरूरी है और हमें ये अक्सर करनी चाहिए अपने साथ हर दिन। एक और साथी लिखते हैं कि वक्त की धूल से धुंधली नहीं होती वो यादें जो दिल के कागज पर मोहब्बत से लिखी जाती है। कोई कितना भी दूर चला जाए, जमाने में गुलमोहर की छांव में कुछ बातें रह जाती है। बिल्कुल, गुलमोहर का जिक्र हुआ है तो इसका गीत हम कैसे भूल सकते हैं। गीत तो फूलों पर है ही, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल। कितने सारे फूल हैं ना जो खुशियां बांटते हैं, आपके चेहरे पर रंग ले आते हैं, तो आप अपने आप को कौन से फूल के साथ रिलेट कर पाते हैं, जुड़ाव महसूस कर पाते हैं, मुझे लिख भेजिए। और कौन सा फूल आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, ये बहुत जरूरी सवाल है कि क्यों अच्छा लगता है, मुझे जरूर लिखिए। साथ ही साथ फूलों को सजाने के अलावा और किस तरह से आप यूज करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास फूलों का बाजार है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर लिख भेजिए। फिलहाल राहत देने के लिए ये खूबसूरत नगमा।

फिल्म देवता से गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में और गुलजार में इसे लिखा आरडी बर्मन की तर्ज थी। जी हाँ, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि गुलाब की लाली और खुशबू की तारीफ सुनकर बाकी फूल जल उठे। मोगरा बोला, मेरी खुशबू के दीवाने हैं लोग। तो निशिगंधा ने कहा कि मैं भी क्या कम हूँ। गेंदे के फूल ने कहा कि मैं तो दिवाली की शोभा हूँ। मतलब एक ही चीज, हर एक चीज का अपना एक समय होता है, लेकिन सभी फूलों की जगह ईश्वर के चरणों में होती है। जी हाँ, क्या खूब कहा है आपने। एक और साथी कहते हैं कि आवाज की दुनिया विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के सभी उद्घोषक और सभी लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, उन सबकी आवाजें मीठी वाद्य यंत्रों से भी सुरीली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कल रात 2 बजे सूरत गुजरात में आंधी तूफान के साथ पहली बारिश हुई और आज धूप के कारण गर्मी बहुत है। यही तो मौसम की बात है, मौसम पल पल में बदलता है। हमारे एक श्रोता है जो कि लंदन से इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऐप के थ्रू और उन्हें ये गीत बहुत पसंद आ रहे हैं। देखते हैं आगे के नगमे आपकी लिस्ट से मैच खाते हैं या नहीं। हमारे एक और साथी है जो लिख रहे हैं कि 15 गीतों की लिखी हुई इबारत में से फूलों पर लिखे हुए मेरे दोनों गीत फेल हो गए हैं और अब देखते हैं और कौन सा मेल खाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल आपके दिल और हमारे दिल एकदम जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं गीत मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन मनोरंजन जरूर विविध भारती पर चलता रहेगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोज दोपहर 1 बजे प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम केवल गीतों का संग्रह नहीं है, बल्कि श्रोताओं के दिलों को जोड़ने वाला एक सुंदर सेतु है। वर्षों से विविध भारती ने अपने श्रोताओं के साथ जो आत्मीय रिश्ता बनाया है, उसे कार्यक्रम और भी मजबूत कर देता है और सोशल मीडिया के माध्यम से श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम को और भी जीवंत बना देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक और साथी लिखते हैं कि फूल बिना कुछ कहे प्रेम, सम्मान, शुभकामना और संवेदना व्यक्त कर देते हैं। मंदिरों की पूजा से लेकर विवाह, स्वागत, उत्सव और स्मृति समारोह तक हर जगह फूलों की जरूरत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप ये जरूर संदेश में लिखिए कि आप किस तरह से इसके अलावा फूलों का उपयोग करते हैं, या फिर सिर्फ सजाने, पूजा भर से या विवाह स्थलों को सजाने, उसके अलावा ये जो फूल हैं जो मुरझा जाते हैं, आप एक बार फूल लेकर आ जाते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि ये सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में, आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

गिफ्ट कर देते हैं या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया, उसके बाद उन फूलों का आप क्या करते हैं, किस तरह से उसे उपयोग में लेकर आते हैं, साझा करते हैं अपने विचार और सुनते हैं कि सब लोग किस तरह से इसे यूज करते हैं। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई एक फूल की बात करना कठिन है, इनका जो रंग होता है, मनमोहक सुगंध होती है, कोमलता होती है, वो हमारे मन को सकारात्मकता से भर देती है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए फूलों की बात चली है तो बताइए, मैं इंतजार कर रही हूँ, फूलों के बाजार का भी इंतजार कर रही हूँ कि आपके एरिया में आप जहाँ रहते हैं उसके आसपास कौन से फूलों के बाजार लगते हैं, आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं।

छुपा है शरारे जैसा तुम्हारी शर्मीली शोखियों।

छुपा है शरारे जैसा तुम्हारी शर्मीली शोखियों।

वही है जो कम दिखाई देती है, लेकिन जिसकी मौजूदगी पूरी प्रकृति को खास बना देती है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आंगन में महकती मधु मालती उन्हें बहुत अच्छी लगती है सुबह सुबह और तमाम उदासियों को दूर कर देती है। हमारे एक साथी लिखती है कि ये शो सुनकर उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फूल बागों में नहीं यहां पर कहीं झड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारे से संदेश के लिए कि जब हम बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि फूल झड़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रही है इस वक्त स्कॉटलैंड से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं और हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे।

हमारे सुरीला सफर के कुछ संदेश इंतजार में हैं। फूलों की बातें चल रही थी तो फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, ऐसा लिखा हमारे साथी ने। मतलब फूलों को कई बार बेरहमी से कुचला और फेंका भी जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और फूल काफी नाजुक होते हैं, उनके साथ इस तरह से बिल्कुल भी बर्ताव नहीं करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। तो फिर उन फूलों को जो हमें गिफ्ट किए जाते हैं और जो मुरझा जाते हैं, उनके साथ ऐसा क्या किया जाए, किस तरह से उन्हें उपयोग में लाया जाए, आप हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमारे साथी लिखते हैं एक और कि विभिन्न फूलों की फूलों में मिली जुही महक, ओके, और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल

0: अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई, जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: जी हाँ दोस्तों, आज दिन में 3 बजे सखी सहेली के साथ जरूर जुड़िएगा। स्पेशल सखी सहेली की वर्षगांठ है और मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी हमारे साथ होंगी। साथ ही आप हमें देख सकते हैं FB लाइव पर। साथ ही आपके जो भी सवाल है हिमानी जी से, वो आप अभी हमारे फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं।

एक और कि विभिन्न फूलों की फूलों में मिली जुही महक ओके और रंग बिरंगे फूल जो है वो मन को तरोताजा कर देते हैं और आंखों को भी तरावट देते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ एक साथी लिखते हैं कि कपास का फूल।

फिल्म आप सबने बिल्कुल ठीक लिखी है। सिलसिला फिल्म से गीत सुनाया गया आपको लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में, शिव हरि का संगीत था और जावेद अख्तर ने इसे लिखा था। साथी फूलों की बातें पहुंच चुकी है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे राज्य ओडिशा में केवड़े की खेती बहुत भारी तादाद में होती है और इसके इत्र बनाने की कई फैक्ट्री है और साथ ही पान मसाले बनाने वाले ज्यादातर खरीदार होते हैं। और एक और साथी हमारे लिखते हैं कि इस पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम नहीं सुन पाई और क्योंकि उनकी बेटी आई हुई थी और बेटी आई हुई है जो कि काफी टाइम उनको व्यस्त रखती है। कोई बात नहीं, स्वागत है आपका आज इस प्रोग्राम में, आप बने रहें जब तक भी आप बन सकते हैं हमारे साथ। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपराजिता शिव जी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं उन्होंने अपने बगिया में और लाइट आकाशी कलर के भी उनको फूल काफी पसंद है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि जब भी

किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज कर सके, पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज्यादा से ज्यादा तरोताजा रह पाए जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज कर सके। हमारी एक साथी लिखती है कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था, और वहां पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की, और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है।

जी को चढ़ाते हैं और अलग अलग प्रकार के फूल उगाए हैं उन्होंने अपने बगिये में, और लाइट आकाशी कलर के भी इनको फूल काफी पसंद है। हमारी एक साथी लिखते हैं कि ये जब भी किसी को गिफ्ट करती है, फूल भेंट करती है, तो हमेशा उसकी जो डंडियां हैं, उसकी जो स्टेम है, उसे लंबा रखती है ताकि अगला भी उसे यूज कर सके। पानी में रखे, हर दूसरे दिन पानी को चेंज करे और वो ज्यादा से ज्यादा तरोताजा रह पाए, जब तक रह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको बाकी कामों में यूज कर सके। हमारी एक साथी लिखती हैं कि फूलों की वादियों में वो एक बार गई हैं, जब गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ का टूर किया था, और वहां पे फूल चट्टी बोलकर एक जगह आई थी फूलों की, और बहुत खूबसूरत फूल लग रहे थे। मोबाइल तब नहीं होते थे इसलिए फोटो नहीं खींच पाई वो। जी हाँ, उसके अलावा ट्यूलिप गार्डन का जिक्र आया है।

फिल्म अपनी पराई से गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं सुना पाए क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आपके मैसेजेस मुझ तक फूलों के पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूं कि कईयों ने यहां पर प्रश्न लिख दिए हिमानी जी के लिए, लेकिन आप फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर सखी सहेली के नीचे पोस्ट के नीचे आप जरूर अपने प्रश्न रखिए और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के मैसेजेस के लिए। आज का सुरीला सफर यही समाप्त होता है, इजाजत दीजिए। आपने आज का यह सफर तय किया अनुराधा के संग।

नमस्कार दोस्तों, हर मनुष्य के जीवन में सुख दुख धूप छांव की तरह है। समय का पहिया घूमता है तो कभी सुख आता है तो कभी दुख। सुख का समय तो पंख लगाकर उड़ जाता है, लेकिन दुख का समय बेहद लंबा और कष्ट भरा मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में सुख दुख का चक्र चलता ही रहता है। इसमें घबराने की बजाय धैर्य से काम लेना ही समाधान है। जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा लाभ है, ये हमें अपने व्यक्तित्व में अंदर झांकने और उसे मजबूत करने का मौका देता है। दुख हमें अपने सच्चे और झूठे रिश्ते नातों और दोस्तों के असली चेहरे हमारे सामने उजागर कर देता है।

जीवन में जब भी कोई संकट आता है और अधिकांश लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब अपनी सहायता ईश्वर के अलावा हम स्वयं करते हैं। हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी सकारात्मकता हमें जीवन के तूफानों में भी भटकने नहीं देती। अंधेरी सुरंग कितनी भी लंबी हो, उसके अंत में प्रकाश की किरण मिलती ही है। रात कितनी ही काली क्यों न हो, जीवन में सुख की सुबह होती ही है।

0: करेगी और पंजीयन समेत अन्य शुल्क भी वहन करेगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत जुलाई से नई बस सेवा शुरू की तैयारी है। इसकी शुरुआत इंदौर क्षेत्र से होगी, जहां इंटरसिटी, सिटी और अंतर्राज्यीय बसों पर मार्गों पर बसें चलाई जाएंगी। योजना के तहत इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी प्रस्तावित है। प्रदेश भर में कुल 1164 मार्गों पर 5206 बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: जब आज सड़कें अच्छी बन गई और गांव के अंदर बिजली पानी सड़क सारी प्रबंधन हो गए, तो आवागमन के साधनों के लिए बसों का इंतजाम करना ये हम सबकी जवाबदारी है। हमारी सरकार के गठन के समय हमने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की जो घोषणा की थी, इस साल का रक्षाबंधन बहने अपनी बसों से जाएगी, ये प्रयास कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से राज्य के अंतर्वर्ती क्षेत्रों में भी बाकी राज्यों के साथ भी इसका संबंध जोड़ते हुए परिवहन का एक बहुत अच्छा तंत्र सड़क परिवहन में यात्री परिवहन सेवा के रूप में आएगा।
0: बालाघाट जिले के ग्राम नांदी की महिला किसान प्रभावती हरणखेड़ी तिल की वैज्ञानिक खेती अपनाकर अन्य किसानों के लिए मिसाल बन रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में उन्होंने उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर तिल की फसल लगाई है। कम पानी में होने वाली इस फसल से बेहतर उत्पादन और आय की उम्मीद है। प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए आज से शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी जिलों से चुने गए 1872 शिक्षकों को राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये शिक्षक अपने अपने जिलों में अन्य शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा के आखिरी दिन भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 8 दिनों से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे गर्मी और लू का असर लगभग खत्म हो गया है। मौसम विभाग ने आज 45 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। भारत में पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की योगासन टीम भारत के लिए रवाना हो रही है। 11 सदस्यीय अमेरिकी दल युवा और वरिष्ठ दोनों वर्गों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में 5 जून तक ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी पालन सहित जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के चौरई में काले हिरण का शिकार करने वाले एक आरोपी को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। आरोपी पिछले एक माह से फरार चल रहा था। झाबुआ में 28 जून को सभी पोलियो बूथों पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। 29 और 30 जून को स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने राजस्व विभाग में पदस्थ राजस्व निरीक्षक को 80,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पन्ना जिले में आज तड़के शाहनगर और पवई सहित कई हिस्सों में बूंदाबांदी हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से निजात मिली है। शिवपुरी जिले में अवैध उत्खनन करने और पट्टी शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर द्वारा एक फर्जी पत्थर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। इस ब्रेकिंग में इतना ही। नमस्कार।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा।

0: अधिनियम 2026 अधिसूचित किए, पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
1: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
0: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी

0: शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य

0: को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर 0.5% से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी। और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: जी हाँ, जरूर जुड़िए हमारे साथ आज सखी सहेली स्पेशल, यानी कि आज हमारी वर्षगांठ पर मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी से रेडियो सखी ममता सिंह की दिलचस्प बातचीत आप सुनिए। हिमानी जी हमारे स्टूडियो में पहुंच चुकी है, हमारे परिसर में पहुंच चुकी है, 3 बजे से वो फेसबुक लाइव भी होंगी और आप उनसे जो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज की सखी सहेली के पोस्ट के नीचे, हम उन्हें जरूर शामिल करेंगे। और ये दिलचस्प बातचीत बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक लाइव भी हम आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे। वक्त है सदाबहार नगमे का।

और ये है सदाबहार नगमय प्रोग्राम का आखिरी गाना और थोड़ी देर में हमारा सजीव प्रसारण सखी सहेली कार्यक्रम होगा और हमारी जानी मानी अदाकारा जानी मानी अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी विविध भारती के स्टूडियो में आ चुकी हैं। बस दिल थाम के बैठे रहिए श्रोताओं, चार मिनट बाद हम शुरू करेंगे सखी सहेली, विशेष सखी सहेली।

अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सखी सहेली।

0: ヘイリ
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को सजीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे

0: विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है? और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खासतौर से विविध भारती से।
0: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी हम लोग, पापा हमारे घर में तब तक दूरदर्शन नहीं आया था, तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक
1: समाचार वाचक,
0: कुंदन लाल सहगल, एक शॉर्ट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल, भूले बिसरेगी
1: आज भी प्रसारित होता है।
0: हाँ, और वो सुनते थे, और भी मजा आता था। बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
0: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे, तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब। तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था, वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में हैं, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिन्न अंग था। और बचपन क्या आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही, आपके गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है, उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है, तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था। और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला क्या रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने? बताइए हमें।
0: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में, और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ के प्रार्थना।
0: हाँ, और जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो, तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं। तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल। एक गाना सुन लें, उसके बाद फिर हम और आपके यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
0: जी जी।

0: करती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
1: बड़ा गहरा है,
0: बहुत गहरा
1: है। और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्योहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है, और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी है हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई है तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं कि देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
0: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ दो तीन दिन गर्मी होती है तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि
1: जी।
0: और हम लोग जब गर्मियां होती थी तो स्विमिंग पूल में ही पड़े रहते थे, और पापा हमको पापा पहाड़ी थे तो हमको देहरादून वैली में बहुत सारी नदियां हैं, गंगा जमुना तो है ही, हमने जमुना में राफ्टिंग भी करी है, गंगा में भी नहाने जाते थे, लेकिन ज्यादा तो नहीं, करीब 20-25 मिनट में एक लक्ष्मण झूला, वो लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में लक्ष्मण सिद्ध होता था, और सोंग रिवर होती थी तो हम लोग नदियों में जाके नहाते थे। पापा तो सीधे, हमने स्विमिंग पूल में भी था क्योंकि पापा डून स्कूल में पढ़ाते थे तो वहां स्विमिंग पूल था, लेकिन हम लोग नदियों में भी, मतलब प्रकृति से
1: जुड़ाव
0: बहुत जुड़ाव था। और जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो पापा मसूरी ले जा लेते थे, और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है, तो हम लोग प्रेफर करते थे और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर
1: है?
0: मसूरी पहुंचते थे, एक बहुत फेमस दुकान थी। और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है, वहां की पकौड़ियां बड़ी पसंद है, पहाड़ी पकौड़ियां बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग गन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर हैं।
1: लग नहीं रही कि आप शैतान थे, बहुत सीधी साधी लग रही है देखने में।
0: बहुत शैतान थे, मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, इतनी खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चले रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर, मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता, और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे फोन पे, मोबाइल पे, अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: बंदरों की तरह पेड़ों में, आम आजकल के बच्चों ने, आप लोग को मतलब या तो ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं या

0: आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची आम जामुन अमरूद खाए हुए हैं, उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल, तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी, तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने माता पिता को समझाना, तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच

0: अलग ही दुनिया थी
1: हाँ, नहीं सोच ही नहीं सकते थे।
0: जी
1: तो खैर, मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं एमएससी कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का थ्री पेनी ऑपेरा। इतने में एनएसडी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि एनएसडी भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में। उस टाइम एनएसडी थी, अब तो खैर
0: जी
1: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
0: पुणे में
1: है,
0: है और
1: पुणे में है,
0: जी
1: और लखनऊ में भी अब खुल गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी। तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती। तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली, तो मैंने तय किया मैं यहां जाना चाहती हूँ।
0: क्या बात
1: उसी
0: है।
1: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
0: वाह वाह।
1: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसडी का भी इंटरव्यू दे दिया,
0: ओहो, किसी को बताया नहीं
1: किसी को नहीं बताया घर
0: आपने
1: में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का,
0: घर में।
1: तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
0: हाँ, एनएसडी करूंगी।
1: एनएसडी में। तो उसमें मतलब पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेज करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है लड़की को, स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
0: बिटिया।
1: बेटी का,
0: जी जी
1: भटजी की नौनी बहुत होशियार है। अब जैसे ही लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही, सबने कह रहे भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
0: नौटंकी।
1: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड, ये तो भांड कहते थे,
0: बहुत
1: भांड
0: बुरा
1: बीड़ी
0: माना
1: करेगी,
0: जाता था,
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिहर भट्ट शैलेश, वो
0: जी
1: वहां के सब जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी पापा, मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए,
0: क्या बात है।
1: वहां मेरा एडमिशन कराया, और वहां से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहां रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, अपने पैरों पे खुददारी,
0: जी
1: 250
0: जी
1: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगूंगी
0: क्या
1: क्योंकि
0: बात
1: सबके
0: है,
1: खिलाफ,
0: उसमें बहुत बड़ी
1: ढाई
0: बात
1: सौ
0: की
1: की
0: है।
1: स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था ये
0: तो
1: गिर
0: उसमें
1: जाते थे,
0: बहुत बड़ी रकम थी।
1: बहुत बड़ी
0: बहुत
1: रकम थी।
0: बड़ी
1: तो
0: रकम
1: उसी
0: थी।
1: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे मैं, ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
0: जी,
1: मतलब देहरादून से
0: देहरादून
1: दिल्ली
0: से
1: तक।
0: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें ये लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहां पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: जी, गाना।

0: कोई बात नहीं।
1: दोस्तों अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारे विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहां पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही है और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का, पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहे। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: कामनाएं और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की, हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गांव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गांव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं पहली महिला थी जिसने
0: अपने गांव से निकली,
1: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया। आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
0: जी।
1: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ।
0: जी,
1: तो ये मैं क्या, जब एनएसडी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जो छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहां के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी। मैं हमेशा कुछ काम करती रहती हूँ, मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। अभी फिलहाल जब मैं आई, 3-4 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था, जो प्रवासी उनको कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उत्तराखंड से, तो उनसे कि आप क्या कर सकते हैं, तो हमारे उत्तराखंड, जैसे आपने कहा कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो पलायन की है, मतलब गांव के गांव ऐसे खाली हो गए हैं,
0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें, और उनको लोगों को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है, और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन
0: जीवन है।
1: अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई, क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे, और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई, जो मैंने गोद लिया, तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं, महिलाएं हैं, 30-35 बूढ़ी महिलाएं, और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे, क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए, और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की, तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में, तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए, और वो है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गांव के लिए, तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है मानी जी। यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, जो हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे

0: पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है? तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे बोलते हैं गांव में ना, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी
1: जी
0: सड़क
1: बिल्कुल
0: सही
1: बिल्कुल।
0: रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो
1: बिल्कुल।
0: चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें कि चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
1: दुख हुआ होगा
0: दुख
1: फिर
0: हुआ।
1: आपको।
0: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े हैं, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए। और श्रोते ज्यादातर हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं। तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनीस है वो सब, ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं
1: वो
0: सब
1: खा जाते हैं।
0: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहां पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहाये गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई। और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे। और कि मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
1: सच में।
0: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव हैं जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहां पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा, मैंने बात की है सरकार से, वहां पे एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें
1: जी
0: मेरे पापा भी कभी पढ़ते रहते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहां पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले,
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है पहाड़ों में, कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है, और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें ताकि इतनी सारी लड़कियां खासतौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है सारा काम,
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं।
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी
0: जिक्र
1: किया,
0: किया,
1: शेर
0: शेर
1: तक
0: तक
1: आते
0: आते
1: हैं
0: हैं
1: तो
0: तो
1: अकेले
0: अकेली
1: फाइट
0: फाइट
1: करती
0: करती
1: हैं,
0: हैं,
1: लड़ाई
0: लड़ाई
1: करती
0: करती
1: हैं
0: हैं
1: उनको
0: उनको
1: अपने
0: अपने
1: बचाव
0: बचाव
1: के
0: के
1: लिए।
0: लिए।
1: तो ये पहाड़ों
0: पहाड़ों
1: की
0: की
1: महिलाओं
0: महिलाओं
1: को
0: को
1: हम
0: हम
1: सलाम
0: सलाम
1: करते
0: करते हैं,
1: हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम तो हम
0: बिल्कुल,
1: आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: क्यों
1: कहां
0: नहीं,
1: से
0: नारी,
1: आई।
0: पहाड़ियों, पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगोड़ा जी ने या चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है सचमुच। तो हम
0: हाँ,
1: इसी
0: इसी
1: बात
0: बात
1: पर
0: पर
1: आज
0: आज
1: आपके
0: आपके
1: हाथों
0: हाथों
1: एक
0: एक पौधारोपण
1: पौधारोपण भी
0: भी करेंगे,
1: करेंगे। अभी इस
0: जब
1: प्रोग्राम
0: प्रोग्राम
1: के
0: के
1: बाद
0: बाद
1: 4 बजे
0: 4 बजे
1: जब
0: जब
1: हमारा
0: हमारा
1: प्रोग्राम
0: प्रोग्राम
1: सजीव
0: सजीव
1: प्रसारण
0: प्रसारण
1: खत्म
0: खत्म
1: होगा,
0: होगा,
1: यहाँ
0: यहाँ
1: विविध
0: विविध
1: भारती
0: भारती
1: के
0: के
1: परिसर
0: परिसर
1: में,
0: में
1: और उस
0: उस
1: पौधे
0: पौधे
1: का
0: का
1: नाम
0: नाम
1: हम
0: हम
1: सखी
0: सखी
1: सहेली
0: सहेली
1: हिमानी
0: हिमानी
1: शिवपुरी
0: शिवपुरी
1: रखेंगे।
0: रखेंगे।
1: तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये मेरे लिए भी बहुत गौरव की बात है और धन्यवाद। और पेड़ लगाना ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये
1: जी

0: एनवायरमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी स्तर पर,
0: निजी स्तर पर, कि हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम जामुन के, बस वही हम खा रहे हैं,
0: वही हम खा रहे हैं, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारे सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फेहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी, तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इससे पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम। और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहां तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती, और राधा जी, सुलक्षणा, हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी हैं, तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी, क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे, फिर आजकल तो एक एक भी होता है, मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं, क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे, क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास, कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई, क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना, तो एनएसडी रेपर्टरी, वो गवर्नमेंट जॉब था ना, तो वो नॉर्मल टाइमिंग वही होता था 9 to 5, और जब शोज होते थे हमारे प्लेस, तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते, थिएटर पैसा नहीं होता, तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में। आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है, तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी, और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे, तो जैसे बैठे रहते, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है, तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं, तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करते हैं,
0: इमेजिन
1: की आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमराही किया देवकी भौजाई का, तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ, कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई, क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना, हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे, आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग, आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पे, पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी, तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी, कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था, मुझे तो नहीं पता था, पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे, तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी, ऐसी अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
0: कुछ कुछ होता है, और
1: रिफत भी, और दिलवाले दुल्हनिया की भी, रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार,
0: उमराव जान में भी आपने काम किया,
1: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था
0: जी जी का,
1: सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
0: जी जी जी, वो बहुत
1: किरदार, कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ उस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही है, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर है तो आप माँ के रोल करनी और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया, तो बंधन में जो मेरी माँ है और मुझे कुछ कहना है या मैं प्रेम की दीवानी हूँ या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, तो बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपनी DDLJ की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
0: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
1: सूरज का सातवां घोड़ा
0: मम्मो कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहां एक तरफ कला फिल्म एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।

0: कोई राज की बात नहीं. ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं. और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते कह रहे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है. और हम ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है. शेक्सपियर ने भी कहा कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
1: रंगमंच है,
0: रंगमंच है जिंदगी. तो आप देखिए सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं.
1: बिल्कुल,
0: ये तो जिंदगी सिखाती है
1: जी. बिल्कुल सही बात है. यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं. एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं, हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है.
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी.
1: एक अंश सुनते हैं.

गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी बताइए कि आज की युवा पीढ़ी जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भी एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गांव में, छोटे शहरों में, कस्बों में

0: आठ घंटे या छह घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफी सारे लंबे आर्स होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्स होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
1: लियाकत है,
0: हाँ,
1: प्रतिभा
0: और
1: है,
0: सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्रामर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
1: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
0: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
1: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी।
0: एक महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है,
1: बताना
0: चाहे
1: पड़ता
0: आप चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूव करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर लोग ये सोचते हैं अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी, मतलब आप लड़की है, आप देखने में खूबसूरत है, तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला कि अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है, तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है, तो एक ये सब
1: दूरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, बताओ हिमानी शिवपुरी।
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल, और अपनी शक्ति को तलाशे, और आपकी इस लंबी
0: शक्ति है, और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी, अब गाना सुनवाए एक,
0: जरूर।
1: कौन सा गाना, खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं। विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती है, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है, आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये आपसे हम वादा करते हैं, और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर जरूर आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया, हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था, और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान, और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ, और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को आप का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं, आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: नमस्कार।

0: बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार है जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया, सभी के साथ संगत भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की। चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है वो है क्लासिकल डांस का, जहां बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहां, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब
0: बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहां पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
0: अच्छा
1: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहां हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की है वहां पे,
0: वाह वाह।
1: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचिन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जलोजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी,
0: जी
1: और जसपाल मुनी जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुड़ी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के
0: जी।
1: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूं। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
0: दर्जा
1: वर्चस्व रहा है दिल्ली में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
0: वाह।
1: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
0: अच्छा।
1: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
0: जी
1: वो भी बांसुरी वादक है और म्यूजिक डायरेक्टर है।

0: उन्होंने दिल्ली में पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर,
1: ये सफर इस तरह से चलता रहा
0: जी दिल्ली।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं
0: जरूर।
1: तो आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं
0: जी,
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं।
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी, जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना
1: जी,
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है
1: क्या
0: पिताजी के साथ।
1: वाह।
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूँ।
1: वाह,
0: आप देख रहे होंगे इस पे ये निशान।
1: जी जी जी जी।
0: और ये आप जब रियाज करते हो तो ये भी निशान पड़ जाते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ, उंगलियों के।
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी मेरी।
1: वाह।
0: और ये जो थ्रेडिंग है
1: जी,
0: ये देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा,
0: तो वैकुंठ वेणु जो है लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए, आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो मुझे वो जो होना है, जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है, जो इमोशन है, वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोहर का, तो हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के, मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके, सलीम सुलेमान जी से लेके, विशाल शेखर जी से लेके, सब सब सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शरणाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सके, अब उसमें पंडित प्रवीण गोखंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन चेमाशन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट

0: जुड़े थे काफी। देवो प्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें।
1: वाह।
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी।
0: मेरे भाई ने राग हंसोधनी बजाया था और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ रेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी, क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा,
1: जरूर
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: परसी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए,
0: जी
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव दे के पिताजी के पास जाते थे, दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मुनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे, तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: एक मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, वो इतना आसान जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी,
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूं तो भी नहीं बता सकता
0: जी,
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ता,
1: त्याग करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस चीज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल, एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल,
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में जिनका आप जिक्र करना चाहें आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी

0: लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
1: जी
0: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
1: जी जी
0: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
1: ओ माय गॉड के
0: जिसमें
1: बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी
0: जी
1: पीसेस हैं।
0: जी
1: जी
0: जी
1: और

0: गॉड हो,
1: ओबे गॉड की बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
0: जी जी जी
1: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं।
0: जी
1: जी
0: जी और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
1: जी जी राजश्री प्रोडक्शंस की,
0: जी,
1: अमिताभ बच्चन थे।
0: एक मिली पिक्चर आई थी
1: जी
0: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
1: वाह वाह,
0: मुन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
1: क्या बात है,
0: दबंग 3 है, दृश्यम है,
1: ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है,
0: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुडबाय है, मनमर्जियां है,
1: वाह वाह,
0: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
1: हाँ दोनों पार्ट,
0: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
1: वाह वाह,
0: बहुत सारी पिक्चरें
1: जी
0: और भी
1: बिल्कुल।
0: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है
1: हाँ
0: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है,
1: जी जी बिल्कुल,
0: बट बिकॉज एज आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट सो इट्स माइंड पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं
1: जी,
0: तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है
1: जी,
0: तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को मैं एंजॉय करता हूं
0: जी जी।
1: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं,
0: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
1: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहां पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे
0: बिल्कुल।
1: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
0: बहुत एक्सपेरिमेंट है।
1: और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी
0: जी बिल्कुल,
1: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम
0: जी जी,
1: तो वो जो लोकप्रियता है लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
0: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
1: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के
0: जी,
1: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहाँ हमेशा हूँ आपके साथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
1: जी,
0: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है
1: जी? पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
0: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
1: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
0: वाह।
1: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री इंडस्ट्री के
0: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
1: मेटल फ्लूट हो नहीं, ये मेटल फ्लूट है सर
0: जी बिल्कुल,
1: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
0: वाह
1: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है
0: जी जी।
1: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम बैम्बू
0: डिफरेंट
1: है
0: बिल्कुल।
1: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
0: ये भी बजाना होता है,
1: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
0: जी।
1: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी,
1: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
0: जी।
1: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहां पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी, एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर था।
0: और ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू।
1: जी जी
0: ये इसमें हम गाते हैं।
1: हाँ ये कजू तो बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसमें हम गाते हैं, ये तो पता ही आपको।
1: जी जी जी जी
0: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा,
1: जरूर बिल्कुल बहुत जरूरी है।
0: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
1: हाँ हाँ
0: रहमान साहब के गाने का है।
1: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है,
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंद निकल लेता
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट, मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी
1: मैं
0: जी।
1: बहुत घूमा हूँ, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूँ, लंदन घूमा हूँ, यूरोप घूमा हूँ, जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने, तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। सो अच्छा, आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का,
0: बिल्कुल,
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: सो अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो एक
0: ये तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है,
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है, ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे, तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है रिटर्न एंड विंड्स, तो उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
0: जी।
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
0: जी जी।
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूं
0: जरूर।

अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही

0: होने की बात करते हैं तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है. आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट दैट इज क्रिएटेड बाय मी.
1: जी
0: अब ये एक है और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है.

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है।

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है
0: क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका,
1: वाह।
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने
1: और ये फिल्म म्यूजिक
0: जो
1: में
0: मैं
1: बहुत सुनाई दे रही है
0: बहुत बहुत
1: खासकर।
0: बजाया मैंने इसको
1: जी
0: फिल्म म्यूजिक
1: जी
0: में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया,
1: जी
0: एल्बम में जो कंपोजिशन

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: आगे।
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना,
0: जी।
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए।
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी।
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बजाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको। अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी।
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा। पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं।
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह का राग तोड़ी है।
0: जी जी।
1: अब सारे गामा ऐसे ही बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।

0: ये भी सारे गाँव है,
1: जज्बात आ गए,
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं ये रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए।
1: जी
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है।

0: इस महफिल को यहाँ रोकते हुए,
1: आपका आपका और इस जगह का जादू ऐसा है कि
0: जी
1: मेरा खुद का मन नहीं करते जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है,
0: मैं समझ सकता
1: आपका भी
0: हूँ
1: कार्यक्रम है आगे
0: जी
1: और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
0: जी
1: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा हमने शुरुआत की, दिस
0: जी
1: इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
1: नहीं जाने।
0: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
1: तो
0: और
1: मैं
0: एक गाने की फरमाइश कीजिए।
1: हीरो,
0: देखिए फरमाइश भी आ गई है।
1: ये तो फरमाइश नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट है।
0: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
1: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
1: कॉम्प्लीमेंट है।
0: जी जी जी जी
1: तो
0: हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
1: जी
0: और आपको भी हीरो कह दिया है।
1: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
0: जी
1: सो ये हीरो धुन
0: जी
1: स्पेशली डेडिकेशन टू यू,
0: शुक्रिया,
1: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: मैं आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को।
0: बिल्कुल।
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वाले के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूं
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: उसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसे सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूं आपको
0: जी।
1: विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी
1: कभी कभी इंडस्ट्री में, क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी
1: सिंगर गा
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: ऐसे कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है, एक कलर्स चैनल का जो थीम है, तो

0: मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
1: ओके,
0: तो ये एक थीम है। और दूसरा, फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
1: गाने, बहुत शानदार पीस है ये
0: आपके लिए स्पेशली, मोमो के धागे।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसजी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

मेरी किस्मत की किताब है तेरे हाथों में, सोच लो क्या करना है। मेरी तन्हाइयों का हिसाब है तेरे हाथों में, सोच लो इस दिल का अब क्या करना है।

0: बहाने, इन बहानों के फसाने हमें कर रहे हैं बेकरार। कब बनेगी फूल ये कली, है बस इसी का इंतजार।
1: ये कली जब

0: क्या भरोसा है कल का, जो करना है चलो आज ही करें। जो चाहते हैं कि रेशम सा हो रिश्ता हमारा, तो ये कोशिश आज ही करें।
1: रेशम की डोरी रेशम की डोरी कहां जय हनिंदी।

जब से लगाया है दिल इस दिल का तो बुरा हाल है, छोड़ जाओगे घर कभी तो क्या होगा, जी को सता रहा यही ख्याल है।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। शाम के 5:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यवाणी।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जागरूकता और मनोरंजन का खूबसूरत संगम लेकर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युवानी में। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी मुस्कान ठाकुर। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सामाजिक विषय, बच्चों की सुरक्षा समाज की जिम्मेदारी पर। इसके साथ ही अगले अंक में होगी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप परख सकेंगे अपने ज्ञान को, और हमारे अंतिम अंक स्तंभ में जानेंगे कुछ अजब लेकिन गजब तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे, और सुनवाएंगे मधुर गीत जो आपको एकदम रिलैक्स कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का युवानी आज की बात से। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनके सपनों में आने वाले कल की तस्वीर छिपी होती है। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी ऊर्जा ही समाज को आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि यदि बच्चों को सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण न मिले तो उनका विकास प्रभावित हो सकता है। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा केवल माता पिता का दायित्व नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आज के समय में बच्चों के सामने अनेक चुनौतियां मौजूद है। कभी सड़क पर असुरक्षा का माहौल, कभी ऑनलाइन दुनिया के खतरे, तो कभी सामाजिक बुराइयां बच्चों के विकास में बाधा बनती है। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि हम सभी मिलकर बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां वे निडर होकर अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, बच्चों की सुरक्षा की शुरुआत घर से होती है। परिवार बच्चों का पहला विद्यालय होता है। माता पिता यदि बच्चों के साथ खुलकर संवाद करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उन्हें सही गलत की पहचान कराए, तो बच्चे अधिक आत्मविश्वासी और सुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चों की सुरक्षा में विद्यालयों की भूमिका

भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल पढ़ाई का स्थान नहीं बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का भी केंद्र है। शिक्षकों का दायित्व है कि वे बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करें और उन्हें अपने अधिकारों तथा जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाएं। यदि किसी बच्चे के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे तो उस पर संवेदनशीलता से ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्तों, आज डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा का एक नया पहलू सामने आया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने ज्ञान के नए द्वार खोले हैं, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। साइबर बुलिंग, फर्जी जानकारी और ऑनलाइन फ्रॉड जैसी समस्याएं बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए बच्चों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग सिखाना समय की आवश्यकता है। अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन दुनिया में भी सावधानी उतनी ही जरूरी है जितनी वास्तविक दुनिया में। और हाँ दोस्तों, यहाँ समाज की भूमिका भी बहुत वो महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को परेशानी में देखें तो उसकी मदद करने का प्रयास जरूर करें। कई बार छोटी सी सतर्कता किसी बड़े हादसे को टाल सकती है। बच्चों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार ही एक स्वास्थ्य और स्वस्थ समाज की पहचान है। हमारे देश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनेक कानून और योजनाएं बनाई गई, जिनका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सुरक्षा प्रदान करना भी है। लेकिन कानून तभी प्रभावी बनते हैं जब समाज भी अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसके अनुसार कार्य करे। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर बच्चा एक अनमोल संभावना है। आज हम जिस बच्चे को सुरक्षित वातावरण देंगे, वही कल देश और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसीलिए बच्चों की सुरक्षा को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक नैतिक कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम सभी ये संकल्प ले कि अपने घर, स्कूल, मोहल्ले और समाज में बच्चों के लिए सुरक्षित, सकारात्मक और प्रेरणादायक वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और दोस्तों, अब बारी है आपसे किए गए मनोरंजन के वादे को निभाने की, जो पूरा होगा इस प्यारे से गीत से। लीजिए, पेश है गीत।

इस मधुर अंतराल के बाद दोस्तों अब बारी है कार्यक्रम के अगले अंक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी की, जहां हम लाते हैं आपके लिए कुछ सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्न और साथ ही देंगे उत्तर पिछले सप्ताह के प्रश्नों के। तो हो जाइए तैयार अपने उत्तर के साथ, क्योंकि सबसे पहले हम जानेंगे पिछले सप्ताह के उत्तर। तो दोस्तों पिछले सप्ताह पूछा गया पहला प्रश्न था, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, जिसका उत्तर है दोस्तों 24 सितंबर 1932। आपको बता दूं ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुआ एक महत्वपूर्ण समझौता था। ये समझौता मुख्य रूप से डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ जाता है और इसका संबंध डिप्रेस्ड क्लास के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से था। दोस्तों हमारा पिछले सप्ताह पूछा गया दूसरा प्रश्न था, ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर वन राज्य कौन सा है, जिसका उत्तर है बिहार। आपको बता दूं ये उपलब्धि राज्य बिहार को ग्रामीण स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, शौचालयों की प्रभावी उपयोग और गांवों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के आधार पर मिला। हमारे पिछले सप्ताह पूछा गया तीसरा प्रश्न था, एशियाई खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे, जिसका उत्तर है एशियाई खेल 2026 का आयोजन आईची प्रीफेक्चर और नागोया जापान में किया जाएगा। आपको बता दो यह एशियाई खेलों का 20वां संस्करण होगा और यह प्रतियोगिता 19 सितंबर 2026 से 4 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। हमारा पिछले सप्ताह पूछा गया चौथा प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला, जिसका उत्तर है नॉर्वे और स्वीडन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया, जो वहां का विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। वहीं स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया, जो कि विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार प्रमुखों को दिया जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों हमारा पिछले सप्ताह पूछा गया पांचवा और अंतिम प्रश्न था, 1965 का भारत पाक युद्ध मुख्यतः किस मुद्दे पर हुआ था, जिसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये थे हमारे पिछले सप्ताह के पूछे गए प्रश्न, उम्मीद है आपने ध्यानपूर्वक उत्तर मिला लिए होंगे। अगर आपके उत्तर सही है तो दीजिए खुद को शाबाशी। और अब बारी है आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम की उपवाणी में। और अब हो जाइए तैयार कॉपी और पेन के साथ आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को नोट करने के लिए। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। हाल ही में भारत की जनगणना 2027 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले किसकी गणना हुई? दोस्तों, हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए? एक बार फिर सुनिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए? हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? एक बार फिर सुनिए, किस राज्य सरकार ने अपनी रोजगार गारंटी योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की है? हमारा आज का चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? एक बार फिर सुनिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों, हमारा आज का पांचवा व अंतिम प्रश्न है, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, उम्मीद है आपने प्रश्न नोट कर लिए होंगे। आप हमें प्रश्नों के उत्तर पत्र द्वारा या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। पत्र के लिए हमारा पता है, युवानी कार्यक्रम श्रृंखला सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, आकाशवाणी केंद्र बैतूल। हमारा पिन कोड है 460001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। नंबर एक बार फिर सुनिए, 7141234722। तो दोस्तों, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमें पिछले सप्ताह अपने उत्तर पत्र व संदेश के माध्यम से भेजे थे, उन श्रोताओं के नाम हैं यशस्वी, प्रीति, प्रिया, अक्षत और आरव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी तरह आप युवानी से जुड़े रहेंगे। और अब चलते हैं गीत संगीत की ओर।

इस अंतराल के बाद दोस्तों अब बारी है कार्यक्रम के सबसे रोमांचक मजेदार श्रृंखला अजब गजब दुनिया की, जिसमें आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खुद को किडनैप करवाने वाली कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जरा सोचिए, जहाँ आमतौर पर लोग अपहरण यानी किडनैपिंग से बचना चाहते हैं, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसे देकर खुद को किडनैप करवाते हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अमेरिका के डिट्रॉयट शहर में एक्सट्रीम किडनैपिंग नामक कंपनी ने लोगों को रोमांचक अनुभव देने के लिए एक अनोखी सेवा शुरू की। इस सेवा के तहत ग्राहक पहले से अपनी सहमति देता है, फिर तय समय पर कंपनी के लोग उसे अचानक पकड़कर किसी दूसरी जगह ले जाते हैं। किडनैपिंग रियलिस्टिक लगे इसके लिए ये ग्राहक को बांधकर पिटाई भी करते हैं और बिजली के झटके भी देते हैं, जिससे ग्राहक को असली किडनैपिंग जैसा रोमांच महसूस हो। हालांकि इसमें सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाते हैं और सब ग्राहक की अनुमति से होता है, फिर भी यह सुनने में बेहद अजीब लगता है। ये घटना हमें बताती है कि रोमांच की तलाश इंसान कितना भी अनोखा और हैरान कर देने वाली चीजें कर सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा रोमांच अनुभव करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर। फिलहाल चलते हैं प्यारे से गीत की ओर।

श्रोताओं, चलिए अब नजर डालते हैं हमारे केंद्र से आज की आज और कल की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं आज के शेष कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम माटी के स्वर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए गंगाबाई मौर्य और सखियों को। कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम 6:30 और इसके ठीक बाद गैर फिल्मी गजलों भजनों का वालियों का प्रोग्राम सब रस का समय रहेगा शाम 6:50। श्रोताओं, कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनिए आज शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा जनगणना कार्य में सही जानकारी दे। इसके अलावा कृषि चर्चा में आज का विषय रहेगा खेत की गहरी जुताई से लाभ। इन सब के अलावा श्रृंखला बातें खेती किसानी की एक भेंट वार्ता, कुछ लोक संगीत, मौसम का हाल और बाजार भाव। चित्र माधुरी फिल्म संगीत के ये कार्यक्रम सुनिए रात 8:00। कार्यक्रम युगल गीत रात 8:30। फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद का समय रहेगा रात 10:00 और 10:30 सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित जसराज का गायन राग बागेश्वरी में। श्रोताओं, आज रात 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण इस विषय पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।

कल यानी बुधवार 3 जून को हमारी प्रसारण सभा आरंभ होगी सुबह 5:55 से। सुबह 6:05 पर सुनिए कार्यक्रम भक्ति धारा। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और हरिओम शरण को। श्री रामचरित मानस गान सुबह 6:35 पर। इसमें कल के कलाकार होंगे श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे। लोक गीतों का प्रोग्राम लोक रंजनी का समय रहेगा सुबह 6:45। इसमें कल सुनिए नानक राम बारस्कर और साथियों के गाए कुछ पारंपरिक लोकगीत। सुबह 7:20 पर प्रसारित होगा क्लासिक फिल्मी गीतों का प्रोग्राम यादों के झरोके से। कुछ जन उपयोगी सूचनाओं के साथ हम हाजिर होंगे सुबह सवेरे में सुबह 7:50 पर। और कल के इसी सभा में सुबह 8:30 सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कल सुबह 10:00। 10:05 पर प्रसारित होगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी फरमाइश सुबह 10:10 पर। श्रोताओं कार्यक्रम महिला जगत का प्रसारण होगा कल सुबह 10:30। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वर्ल्ड

बाइसिकल डे पर चर्चा, महिलाओं के लिए साइकिलिंग और फिटनेस। इसके अलावा इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला हमारी बात सखियों के साथ, कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। कार्यक्रम युव वाणी शाम 5:30 बजे। इस कार्यक्रम में कल सुनिए वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पर चर्चा, साइकिल यानी खुद और प्रकृति के स्वास्थ्य के दो पहियों की सवारी। इसके अलावा इस कार्यक्रम के श्रृंखला वसुंधरा में कल का विषय रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक के क्या क्या नुकसान है। इन सब के अलावा श्रृंखला इनसे मिलिए कल के आकर्षण और कुछ फिल्म संगीत। गोधुली भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम सुनिए कल शाम 6:05 पर। कलाकार होंगे अनूप चरोटा। गैर फिल्मी गजलों भजनों कव्वालियों का प्रोग्राम सबरस सुनिए शाम 6:50 पर। श्रोताओं कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण होगा कल शाम 7:20 पर। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे विश्व साइकिल दिवस पर चर्चा। कृषि चर्चा में कल का विषय रहेगा खाद बीज का सही प्रबंधन जरूरी है। इन सब के अलावा श्रृंखला बातें खेती किसानी की एक भेंट वार्ता, कुछ लोक संगीत, मौसम का हाल और बाजार भाव। सेहत की बात गीतों के साथ ये प्रोग्राम सुनिए रात 8:00 बजे। साझा आवाज कार्यक्रम रात 8:30 बजे। फिल्म संगीत का एक प्रोग्राम मेरी पसंद का समय रहेगा रात 10:00 बजे। और 10:30 बजे सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें कल आप सुनेंगे संगीता दत्ता को। सभा के अंत में कल रात 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष महिला का कल्याण, इस विषय पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। तो श्रोताओं ये थी हमारे केंद्र से आज और कल की प्रसारण सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए लोक संगीत का प्रोग्राम माटी के स्वर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए गंगाबाई मौर्य और सखियों को।

लोक संगीत के प्रोग्राम माटी के स्वर में आप सुन रहे हैं गंगाबाई मौर्य और सखियों को आकाशवाणी के बैतूल केंद्र से।

सुन रहे थे लोकगीतों का प्रोग्राम माटी के स्वर। आज इस कार्यक्रम में आपने सुना गंगाबाई मौर्य और सखियों को। यह आकाशवाणी बैतूल है।

0: प्रिय किसान भाइयों, जरूर सुनिए अपना मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी, आकाशवाणी बैतूल FM 103.1 MHz पर रोज शाम 7:20 से 8 बजे तक, जिसमें आपके लिए है कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और ग्राम विकास पर ढेर सारी जानकारियाँ।
1: 12 से ज्यादा % अगर नमी का होगा तो वो बीज आपका खराब होगा।
2: प्राकृतिक खेती में हमें विभिन्न प्रकार की फसलों को लेना चाहिए।
3: डेयरी फार्म में दूध में फेट का % यदि बढ़ाना है।
0: स्थानीय लोकगीत, मंडी भाव और मौसम का पूरा हाल चाल भी, तो सुनते रहिएगा कार्यक्रम किसान वाणी, ट्यून करें आकाशवाणी बैतूल 103.1 MHz पर या डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप।
4: यह आकाशवाणी बैतूल है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। बोल समीर के हैं, संगीत भूषण दुबा का।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में अभी आपने सुनी फिल्म जान की कसम से ये गाना। संगीत था भूषण दुआ का।

मजरू का लिखा गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम वतन के रखवाले।

कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण का गाया ये गाना, जिसे लिखा है प्रयागराज ने और जिसकी धुन बनाई है बप्पी लहरी ने। फिल्म है ब्रह्मा।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत, यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सबरस।

रूना लैला को आप सुन रहे थे सब्र इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह का गाया यह गजल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी बैतूल है। अब वक्त है समाचारों का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जोड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: घर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति लाभार्थी युवाओं से की मुलाकात। ओएसएम विवाद में केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला, जांच समिति भी गठित। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 30,485 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी। स्वामित्व योजना और सिली सिलाई यूनिफॉर्म समेत कई बड़े फैसले। और त्रिशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जज गिरवाला सिंह और बेटे समर्थ को 14 दिन के लिए हिरासत। 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी युवाओं से मुलाकात की और उन्हें प्रेरक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और अवसर की। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये युवाओं के सपनों को पंख देने का काम करती है।
1: शिक्षा ही अशक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। मैं मेरी जीवन यात्रा में भी शिक्षा का ही अहम योगदान है। आपकी शिक्षा और आपका अनुभव उन बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहिए जो सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपने देख रहे हैं। जो आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी साथ लेकर चलेंगे तो भी सच्चे अर्थ में राष्ट्र का समावेशी विकास संभव है।
0: सीबीएसई के मूल्यांकन विवाद में केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी ओएसएम के ठेके में गड़बड़ी की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु सिंह का भी तबादला कर दिया गया है। ओएसएम वो व्यवस्था है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर शिक्षक कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑनलाइन जांच करते हैं। इसी सेवा की खरीद में अनियमितता के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में आम लोगों, किसानों और विद्यार्थियों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए 21,485 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। सबसे अहम फैसला स्वामित्व योजना को लेकर किया गया है। इस फैसले को लेकर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया।

0: जो केंद्र सरकार की स्वामित्व अधिकार की योजना थी, मध्यप्रदेश सरकार ने उसने निर्णय लिया है कि हम सारे 48 लाख एक जो लाभान्वित हमारे जो जिनको पट्टे प्राप्त जो रजिस्ट्री प्राप्त होनी है उनको हम रजिस्टर दस्तावेज देंगे। यह पूरा निःशुल्क रहेगा और हर व्यक्ति को यह मध्यप्रदेश देश के अंदर सबसे पहला राज्य बनेगा जो रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज उपलब्ध करवाएगा।
1: इसके अलावा सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को अब सिली सिलाई तैयार यूनिफॉर्म दी जाएगी। कैबिनेट ने बरकी बांध क्रेन हादसे की न्यायिक जांच, हिंदी फिल्म तनवीर अग्रेट को टैक्स फ्री करने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत बसें शुरू करने की तैयारी जोरों पर है ताकि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर आसानी से पहुंच सकें। प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी ने मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त डॉ. बशीर बद्र के निधन पर उनके परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा कर बशीर बद्र के नाम पर एक साहित्यिक पुरस्कार स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश उद्योग अकादमी 4 जून को भोपाल के रविन्द्र भवन में यादव बशीर बद्र कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें फिल्मकार विशाल भरद्वाज, गायिका रेखा भरद्वाज और शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी समेत कई नामी हस्तियां शिरकत करेंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित प्रीशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की 5 दिन की रिमांड पूरे होने के बाद पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समित सिंह को आज विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में रखने का आदेश दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में मॉनसून की तैयारियों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने इस साल मॉनसून के सामान्य से कम यानी करीब 90% रहने और अननोनों का असर पड़ने की आशंका जताई है। श्री चौहान ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जिन इलाकों में कम बारिश की आशंका है वहां वैकल्पिक फसलों, सूखा सहनशील बीजों और जल प्रबंधन की पूरी तैयारी रखी जाए। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में यूपीआई ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। मई 2026 में यूपीआई के जरिए 23.2 अरब यानी करीब 2312 करोड़ लेनदेन हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 30 लाख करोड़ रुपए रही। इसका मतलब है कि हर रोज औसतन 73 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए हुए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन मांगे हैं। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ये सम्मानित पुरस्कार राष्ट्रपति उन बच्चों को देते हैं जिन्होंने वीरता, खेल, कला, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक सेवा में कोई खास उपलब्धि हासिल की हो। महिला बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन सिर्फ awards.gov.in पोर्टल के जरिए ही जमा किए जा सकते हैं। बड़वानी पुलिस जनजातीय छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए रक्षा सखी अभियान चला रही है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में छात्राओं को बढ़िया सुरक्षा कानूनों, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। महज 15 साल की उम्र में आईपीएल में धमाल मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब एक खास शोध का विषय बनने जा रहे हैं। आईआईएम इंदौर उनकी कम उम्र में मिली सफलता के पीछे के कारणों और उसके प्रभाव पर गहरा अध्ययन करेगा। संस्थान के डायरेक्टर हिमांशु राय के मुताबिक शोध में समझने की कोशिश होगी कि परिवार, कोच और सामाजिक सहयोग किस तरह किसी युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करते हैं। 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। इस बार का वैश्विक अभियान जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित है और इसकी मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। बैतूल जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बसे ग्राम टिकरिया को भारत सरकार ने क्राफ्ट विलेज का दर्जा दिया है। इस गांव में बागमारी परिवार पुरातन भरेवा कला से पीतल और 2 मीटर की अनूठी कलाकृतियां बनाता है, जिसमें मोर, चिमनी, हाथी और भगवान की प्रतिमाएं शामिल हैं। आपको समाचार संक्षेप में। बंसौर कलेक्टर ने ग्राम लोनाहिला और बुढ़ा में प्राचीन पावड़ियों

का निरीक्षण किया, जिन्हें जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुनर्जीवित किया गया है। सीहोर जिले के झाबुआ थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 22 वर्षीय बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बारात बस ने उसे टक्कर मार दी थी। आगरमालवा कलेक्टर ने जनसुनवाई में प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के

प्राप्त हुए 74 आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही समाधान किया। छिंदवाड़ा में नगर निगम अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बैतूल में 6 जून को जिला पंचायत परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और नागरिकों में फैल रहे भय को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने विशेष अभियान चलाया है। झाबुआ कलेक्टर ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण से जुड़े मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए। शहडोल में क्षय रोग नियंत्रण अभियान के तहत इन दिनों गांव गांव शहर शहर टीबी की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है। खंडवा में आज आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। विजय इजाजत, नमस्कार।

0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी।
1: किसान वाणी।

बहनों, आज है मंगलवार और आज होता है हमारी बहनों का मनपसंद कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी। और आज इस कार्यक्रम के साथ है आपकी बहन सरिता शेषकर, तो स्वीकार करें मेरा राम राम। श्रोताओं, आपने 2 जून की रोटी तो सुना ही होगा। 2 जून का मतलब तारीख से नहीं, एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, इसका मतलब दोनों वक्त का भरपेट भोजन। अवधी बोली में जून शब्द का अर्थ है वक्त या समय। श्रोताओं, जब किसी व्यक्ति को अपनी मेहनत के बाद 2 वक्त यानी सुबह और शाम का खाना नसीब हो जाता है तो उसे 2 जून की रोटी कहते हैं। यह कहावत इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत रोटी यानी भोजन को दर्शाती है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जो लोग दोनों वक्त का खाना चैन से खा पाते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं। और हमारे किसान भाई इस बात का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बतलाते हैं कि आज कार्यक्रम में क्या है खास। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे आज की बात के विषय पर, और आज की बात का विषय है जनगणना कार्य में सही जानकारी दे। और आगे बातें करेंगे सामयिक कृषि कार्य पर, और कृषि कार्य का विषय है खेत की गहरी जुताई से लाभ। सुनवाएंगे भेंट वार्ता संतरी वाड़ीवा से मछली पालन व्यवसाय पर। होगी श्रृंखला बातें खेती किसानी की, बतलाएंगे बाजार भाव, मौसम का हाल और आपके मनोरंजन के लिए होंगे लोकगीत। और अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज की बात के विषय पर चर्चा। और आज की बात का विषय है जनगणना कार्य में सही जानकारी दे। श्रोताओं, जनगणना कार्य किसी भी देश में रहने वाले लोगों की आधिकारिक गणना है, जिसमें उनकी जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक जानकारी शामिल होती है। यह ग्राम, नगर और वार्ड स्तर पर प्राथमिक जनसंख्या डेटा प्रदान करती है, जिसमें आवास, मनोरंजन, प्रवास और आर्थिक गतिविधियां जैसे पहलू शामिल होते हैं, जिससे लक्षित विकास कार्यक्रम और प्रभावी सार्वजनिक प्रशासन संभव हो पाता है। भारत में जनगणना डेटा का उपयोग सरकार और विभिन्न अन्य हितधारकों द्वारा भोजन और नीति निर्माण, चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन, संसाधन आवंटन और व्यावसायिक भी अपने अपने विश्लेषण और रणनीतियों के लिए इस व्यापक डेटा का उपयोग करते हैं। भारत में जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990, जिनमें समय समय पर संशोधित किए

गए हैं। जनगणना आयोजित करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध एक केंद्रीय विषय है। इसमें सातवीं अनुसूची में मद 69 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत गोपनीयता की गारंटी दी जाती है। आपकी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। केवल राज्य, जिला, उपजिला, गांव, कस्बा आदि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर एकत्रित आंकड़े और सारांश ही प्रकाशित किए जाते हैं। श्रोताओं, कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर लक्ष्यीकरण हो, स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार कर सके, व्यवसायों और शोधकर्ताओं के लिए बेहतर उत्पादन और सेवाएं दे सके। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में अधिनियम के रूप में आयोजित की गई थी। 1881 से यह हर साल 10 साल में नियमित रूप से आयोजित की जाती है। इस क्रम में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। हालांकि कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई थी और अब यह 2027 में आयोजित की जा रही है। इतनी सारी बातें तो जनगणना के बारे में बताई, तो इसमें हमारा क्या योगदान है? तो श्रोताओं, इसमें हमारा यह योगदान है कि जब भी जनगणना कर्मी हमारे घर में आए तो हमें सही जानकारी देना है। इससे सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनती है उसमें सही जानकारी से मदद मिलती है। सही और सटीक जानकारी से सरकार को यह समझने में मदद मिलती है कि कितने लोगों को आवास, उज्ज्वला योजना, पेंशन या खाद्य सुरक्षा जैसे लाभों की आवश्यकता है। श्रोताओं, डरे नहीं। लोगों में यह भ्रम होता है कि जनगणना की जानकारी से टैक्स, नागरिकता या पुलिस से जुड़ी कोई परेशानी हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा जैसे नाम या पता कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता और न ही उसका उपयोग किसी जांच या टैक्स के लिए किया जाता है। तो जनगणना में अपनी सही जानकारी देकर देश हित में आपका भी योगदान होगा। तो यह थी बातें आज की बात के विषय पर, और अब सुनते हैं लोकगीत कृष्णा वर्मा और साथियों के स्वरों में।

0: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
1: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
2: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
3: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
2: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
3: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: तो कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में फिर से आपका स्वागत है। बहनों, अब मिलवाते हैं हमारी मेहमान से, और हमारी मेहमान है संतरी वाड़ीवा, जिनसे हमने मछली पालन इस विषय पर बातें की है। तो चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: बहनों, आज हमारी मेहमान है संतरी जी। संतरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी में। नमस्कार।
6: नमस्कार मैम।
5: तो संतरी जी, आप अपना परिचय अपने श्रोताओं को दीजिए।
6: मेरा नाम है संतरी वाड़ीवा और मैं मंडे खुर्द में रहती हूँ। पोस्ट मेरा है मंदे बुजुर्ग और बैतूल ब्लॉक से ही।
5: जी, तो संतरी जी, इस समय आप खेती किसानी में कौन से काम चल रहे हैं?
6: मैम, अभी तो चल रहे हैं सब्जी लगाना, अब जो गर्मी में लगाते हैं सब्जी लगाए हैं, और हम लोग अभी मछली पालन कर रहे हैं दीदियों के साथ में ग्रुप बना के।
5: जी जी, तो ये मछली पालन का काम अपने खेती बाड़ी के साथ साथ में एक हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, जैसे कि खेती बाड़ी में अगर कोई नुकसान हो जाए तो हम इससे भी भरपाई कर सकते हैं।
6: कर सकते हैं
5: जी।
6: और जो दीदियों से जिनके पास में खेती नहीं है, वो तो आसानी से मछली पालन कर सकते हैं और अपना आय बढ़ा सकते हैं और
5: जी,
6: बढ़ा
5: जी। तो जैसे आप मछली पालन की बात कर रहे हैं, आपने मछली पालन करना कब से शुरू किया?
6: मछली पालन मैम हम लोग अभी कर रहे हैं, इसी वर्ष से कर रहे हैं, जुलाई से। पहले हम लोग 3 महीने पहले इसका प्लान किए थे। जैसे पहले हम लोग जैसे समिति में जुड़े तो हम लोग सोचे, उसके बाद में हमको सहयोग भी मिला। हम खुद से तो नहीं सोच पाए, लेकिन सहयोग मिला। हम लोग पहले

0: नर्मदा मेला से जुड़े, उसके बाद में हमें प्रधान संस्था जो है वहाँ के जो नोडल सर हैं और दीदी हैं जो हमें पूरा सहयोग करते हैं
1: जी। अब मछली पालन की जानकारी भी आपको वहीं से मिली?
0: जी, वहीं से मिली। और हमें ट्रेनिंग वगैरह भी, एक्सपोजर भी लेके जाते हैं पूरा, कि अगर भाई दीदी को आगे बढ़ना है, मछली पालन करना है तो वो कैसे करे। तो जहाँ दीदी अभी बाहर लेके गए थे दीदियों को ट्रेनिंग के लिए, कि कैसे शुरुआत करते हैं, शुरू में क्या क्या करना पड़ता है मछली डालने के पहले, उसके बाद में मछली कब डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, ये पूरा ट्रेनिंग हुआ उनका। तो ये पूरा निःशुल्क।
1: जी, आपने अभी ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा?
0: ट्रेनिंग में पहले तो हम लोगों ने यही सीखा कि पानी कैसा रहना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, लेकिन अभी पहली बार है शुरुआत। तो हम लोग जुलाई में जैसे मौवा खली डालते हैं, मौवा खली डालने से पूरा पानी साफ हो जाता है, जैसे कीड़ा रहता है उसमें, जैसे पहले से कुछ मछलियां छोटे मछली डालेंगे तो उनको खा लेंगे, तो ये पूरा हम लोग पानी साफ करते हैं और उनके लिए खाना बनाने के लिए मौवा खली डालते हैं।
1: तो अभी आपने ये तालाब बना हुआ है या बनवाया है?
0: दो खेत तालाब बनवाए हमने, जो दीदी पर्सनल खेत में अपने खेत में बनवाए, उसके बाद में सरकारी डैम भी है जो कि पंचायत से आवेदन देके हम लोग ने 10 साल के लिए एग्रीमेंट। जैसे समिति की दीदियां हैं, दो समिति मिलके बनाए हैं, तो हम लोग अलग से ही मछली रानी समिति का नाम रखे हैं और उसमें 19 दीदियां हैं जो कि इसमें काम करते हैं।
1: जी, तो जैसे अब आपकी खुद की ही बात करें कि आपने खुद के खेत में ही तालाब बनवाया है, जैसे अब तालाब बनवाने से पहले उसमें अपने को कितनी तालाब की गहराई होनी चाहिए और खेत का चयन करने से पहले भी देखना पड़ता है कि कहाँ पर अपने को तालाब बनवाना है।
0: वहाँ पे थोड़ा सा ढलान होना चाहिए और पानी का स्रोत किधर से आ रहा है पानी, है ना, आउटलेट और ऐसा देना चाहिए, मतलब पानी निकल सके और पानी वहाँ पे तालाब में आ सके, ऐसी जगह का चयन करते हैं। नहीं तो पहाड़ी क्षेत्र में बना लेंगे, वहाँ पानी नहीं जमा होगा तो उसमें भी दिक्कत है। क्षेत्र कम से कम एक सीजन, मतलब ये सोचो कि अपना पानी फरवरी मार्च तक भी रहे, तो अभी तो नया डैम है, फरवरी तक रुका था पानी, फरवरी के बाद में फिर मछलियाँ बेची हमने
1: जी।
0: तो 2-3 महीने पानी नहीं है, जुलाई में और डबल से पानी आ जाएगा। तो फिर मछली पालन जैसे जुलाई में डलता है, एक साल वैसे तो 10 साल का है, तो जैसे 1 केजी के ऊपर अगर बढ़ गया मछलियाँ तो उनको बेचते जाते हैं, जनवरी में डाले तो 4-5 महीने में वो हो जाते हैं 1 किलो तक, और फिर चालू कर देते हैं बेचना
1: जी।
0: उसके बाद वो फिर लगातार चलते रहता है। अभी हम लोग मछली निकाल रहे हैं, आज भी निकाले, आज 32 केजी निकाले, चलते रहेगा। अब अभी तो 1 केजी के निकाल रहे हैं, अभी आधा केजी वाले अलग है, 400 ग्राम के अलग है, मतलब अलग अलग है, तो ये चलते रहेगा अब 10 साल तक।
1: हाँ, तो जैसे मौसम का भी प्रभाव पड़ता है मछलियों पे, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसमें मछलियों की बढ़वार में कोई
0: मछलियाँ ठंड के समय मतलब नहीं बढ़ते हैं, तो बाकी गर्मी में अभी पानी मतलब गर्म हो जाता है, है ना, उसमें उनको काफी परेशानी होती है, जैसे पानी गर्म हो जाना तो उनको मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरह से उनको काफी जैसे बीमारियां भी आती है उसमें। हम लोग तो अभी शुरुआत से जैसे ट्रेनिंग हुआ तब से हम लोग खाना डाल रहे हैं, खाना के बाद में बीमारी के लिए हम लोग पहले से ही दवाई डाल रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है और चूना डालते हैं हम लोग और नमक ऐसा करके डालते, तो बीमारी तो अभी नहीं आया हमारे डैम में, ठीक है मछलियाँ।
1: तो जैसे अब मछली पालन अपने को करना है तो इसमें कौन सी प्रजाति की मछली लेना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको समूह से ही दी जाती है?
0: हाँ, तो इसका सभी प्रकार के रहेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, और बेचने में भी कोई परेशान नहीं, कोई बोलते कि हमको ये वाला मछली चाहिए, कोई बोलते ये मछली चाहिए, तो अपने पास अगर पूरे प्रजाति के रहेंगे तो क्या बेचने में भी परेशानी, अगर एक वैरायटी रहे तो फिर दिक्कत हो जाती है।
1: हाँ, सही बात है।
0: जैसे इसमें है मृगल है, कोमल कर है, घास कर है, रोहू, कतला, ऐसे मतलब 4-5 प्रकार के हमने डाले हैं अभी।
1: हाँ,
0: तो रेट अच्छा मिला हमको इस बार और डेली ही निकाल रहे हैं, अभी हम लोग 40,000 के करीब, अभी तो शुरुआत हुआ है।
1: जी जी,
0: हम लोग एक दिन में काफी 10,000-15,000 तक ले लेते हैं एक दिन।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है।

0: कि हम खेती किसानी के साथ में अगर दूसरे काम करते हैं, मछली पालन हो या मुर्गी पालन हो या और भी कोई ऐसे व्यवसाय हमारे रहते हैं, तो हमारी आर्थिक मदद हो जाती है।
1: और ट्रेनिंग भी हुआ दीदियों का, कैसे पकड़ना है, पानी कैसे चेक करना है, जाल कैसे चलाना है, ये पूरा उनको ट्रेनिंग हुआ। और हमारे प्रधान संस्था से हमारे नोडल बहुत सहयोग किए इसमें, और मछलियां भी उधर से डलवाए, खाना फीड ये दवाई पूरा मतलब पूरा भी मदद ही कर रहे हैं
0: जी, तो
1: हमें।
0: मछलियां लाते हैं या मछली का बीज मिलता है?
1: मछलियां का बीज लाते हैं यरलिंग, मतलब अपना हथेली भर का होना चाहिए, तो हम लोग 10 डिसमिल में 250 बच्चे डालते हैं। तो ये बीज लाते हैं बाहर से आए, तो हमको पूरा सहयोग किए यहाँ तक पहुँचाने के लिए, उसका किराया देना, भाड़ा देना, सब मतलब पूरा सहयोग किए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और समिति से जुड़ने से बहुत अच्छा लगा कि नहीं हमारा बिजनेस करने में आज हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं थोड़ा दीदियाँ खुद से कहाँ से मछली लाते, कहाँ ट्रेनिंग करते, इतना दीदियों के पास में नहीं होता पैसा।
0: जी, और उनको थोड़ा घर से निकलने में दिक्कत होती है, छोटे बच्चे रहते हैं, घर परिवार की देखभाल करना रहता है, तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छा रहता है।
1: जी, जो अभी मैं खुद ही अपने ग्रामीण से क्षेत्र से मैं कार्य करता हूँ, और अभी का कार्य भी कर रही हूँ मैं प्रधान ऑफिस में, और एमटी का काम भी कर रही हूँ मैं ट्रेनर के रूप में। तो मुझे ही, मैं अपने आप को देखती हूँ कि घर से पूरा काम करके हमको निकलना पड़ता है, और फिर उधर दीदियों के साथ में करना पड़ता है, मतलब बहुत कुछ। लेकिन समिति का इतना सहयोग है कि हम एक कदम बाहर निकल पाए।
0: बिल्कुल, और आप कर भी रहे हैं, कॉन्फिडेंस
1: जी
0: बढ़ता है इससे कि
1: जी
0: हाँ
1: जी
0: हम ये भी काम
1: हौसला
0: कर सकते
1: बढ़ता
0: हैं।
1: है आगे का, मतलब ये सोचो कि हम आगे कुछ कर पाएंगे, मतलब बहुत कुछ सोच लेते हैं हम कि क्या
0: जी
1: करना है कैसे। अगर घर से ही नहीं निकलेंगे तो हम क्या सोचेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, घर का आपको यह सपोर्ट भी है।
1: सपोर्ट तो बहुत है मुझे, जैसे मेरी फ्रेंड है कविता दीदी, वो जैसे मुझे कभी कठिनाई आती है काम करने में तो बहुत सपोर्ट करती हैं। जैसे हमारे नोडल सर हैं, और घर से भी मेरे हस्बैंड वगैरह, और मेरे चाचा जी हैं, और मम्मी पापा, मतलब सभी लोगों का
0: सभी
1: बहुत
0: का
1: सपोर्ट है।
0: सपोर्ट है।
1: जी,
0: जी
1: मुझे अगर सपोर्ट है तो अपन सब कुछ कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, वो हम मछली पालन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मछली पालते समय अब जैसे अब अपने को बीज तो बाहर से मिल जाते हैं, को जैसे भोजन देना है मछलियों को, तो कहाँ से लाते हैं इनके लिए भोजन, क्या क्या देते हैं इनको?
1: जैसे अभी भोजन देने के लिए हम लोग ने शुरुआत में जो फीड नहीं आया था, फीस फीड बोलते हैं उसको, तो वो नहीं आया था, तो हम लोग मक्के का जो सूजी जैसा मोटा जैसा पिसवा के, और उसको बोरियों में बांध के, ऐसे लकड़ी गाड़ के वो बांधना पड़ता है, तो मछलियां अपने आप उसमें से खा लेते हैं इस प्रकार से। और जैसे चावल है अपने घर का, चावल को अपन उसको पकाकर डाल दो तो वो भी, नहीं तो फिर उसको भी बांधना पड़ता है बोरियों में। और दाल वगैरह फुला के, चना फुला के, ये भी डाल सकते हैं अपन। तो ऐसा नहीं लगता कि हम मछलियों में कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लग रहा कि नॉर्मल ही है।
0: कोई दूसरी चीजें तो है नहीं, अब दाल चावल सारी चीजें तो घर में ही उपलब्ध होता है।
1: हाँ। और जैसे अगर आज अपन ने बनाए और खत्म नहीं हुआ तो दूसरे दिन अपन उनको मछलियाँ को डाल सकते हैं। और अभी तो उधर से फीड आया तो हम लोग फीड डाल रहे हैं, सरसों खली है, इस प्रकार से अभी डाल रहे हैं हम लोग।
0: जी, जैसे मछली पालन कर रहे हैं आप, तो शुरुआत में आपने सोचा होगा कि मैं मछली पालन हम लोग कर तो रहे हैं, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ऐसे कोई विचार आया
1: बहुत
0: अपन?
1: वीडियो में बहुत ही ऐसा लगा, कुछ दीदियां तो बोल रही थी हमें मुनाफा होगा कि नहीं इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि कि पहली बार हम लोग तैरना, उसमें ट्यूब में बैठना, ये बहुत कठिन होता है। और शुरुआत में बहुत तालाब 3 एकड़ में है पानी, तो उसमें तैरना कठिन होता है, लेकिन ऐसे 4-5 दीदियां जो कि इधर से उधर निकल जाते हैं। शुरुआत में अच्छा भी लगा कि हम लोग नया कुछ कर रहे हैं,
0: जी
1: इसमें ऐसा भी लगा कि भाई हमको सफलता मिले या नहीं मिलेगा, है ना, तो इसमें भी आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन ट्रेनिंग किए उसमें,
0: जी तो अभी आपने मछली पालन करने से पहले तैरना सीखा?
1: कैसे जाल चलाना चाहिए, है ना, तैरना कुछ दीदियों को आता है, सभी को नहीं,
0: हाँ
1: पर जाल ट्यूब जो रहता है ना मछुआरे के पास में, उसमें बैठ के हम लोग घूमे कि कैसे बैठते हैं, पहली बार बैठे थे, उसमें भी काफी कठिनाई हुई, लेकिन दीदियों को भी अच्छा लगा, पहली बार डैम में गए। और
0: बिल्कुल वे एक अच्छी ही बात है कि हाँ कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है और साथ साथ में हम अपना काम भी शुरू कर सकते
1: काम भी
0: हैं।
1: शुरू कर रहे हैं और सफलता भी मिल रहा है और हाथ में पैसे आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात
0: बहुत बड़ी बात है कि
1: जी।
0: हम अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं आर्थिक रूप से।
1: खेती बाड़ी तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये बहुत नया लग रहा हमारे लिए
0: जी, तो जैसे अब हम मछली पालन की शुरुआत करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है और खुद को ही खर्चा करना पड़ता है या सरकार की तरफ से मदद मिलती है?
1: अभी तो जो हमारा जो प्रधान संस्था है उधर से पूरा मदद मिला, तो अभी हमें कितना खर्चा आया उसका तो नहीं लगा पाए, लेकिन इस बार सोच रहे हैं हम लोग कि अब हमेशा सरकार भी हमें सहयोग तो नहीं करेंगे भाई, एक बार अपने
0: शुरुआत में
1: तरफ
0: मदद कर सकती है।
1: हाँ
0: हाँ
1: मदद कर सकती है, लेकिन इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि खुद से मछलियां बुलाएंगे। अभी तो 500 ग्राम के है तो वो तो अभी रहेंगे, और अभी पानी भी है तो हम निकालना भी नहीं चाह रहे, वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे निकालते जाएंगे, उसके बाद में वो बढ़ते क्रम में रहेंगे, बारिश हो जाएगा उसके बाद हम खाना डालेंगे
0: जी
1: और ये चलते रहेगा फिर 10 साल तक। आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं गांव का है, पंचायत ने हमको दीदियों को दे दिया, वैसे भी पहले मछुआरा लेता था तो पूरे पैसे वो लेके जाता था, टोटल पंचायत में 25,000 देते थे। पंचायत ने भी सोचा कि नहीं हमारी दीदियों का आय बढ़े, इसलिए दीदियों पंचायत ने ही उनको दिया कि आप लोग करें। और
0: जी संतरी जी, आप घर के काम भी करते हैं, बच्चे भी
1: जी
0: हैं आपके,
1: जी
0: इसको कैसे मैनेज करते हैं?
1: टाइम खेती बाड़ी तो पूरा संभालते हैं, बच्चे घर पे रहते हैं, पहले मैं डिग्री का काम करते थे लेकिन अब मैं बाहर निकल जाती हूँ तो फिर घर पे भी तो रहना, आप छोटे बच्चे हैं उनको देखना बहुत पड़ता है।
0: जी,
1: अब मेरे छोटा बेटा है 4 साल का, अब उनकी समझ नहीं है तो उनको देखना पड़ता है, इसलिए हम दोनों मैनेज कर लेते हैं।
0: जी, एक दूसरे का
1: जैसे
0: सहारा है।
1: हाँ एक दूसरे का सहारा, जैसे मैं बाहर का करती हूँ तो वो घर का खेत का पूरा कर लेते हैं, अभी सब्जी लगा है और पानी देना, ये बहुत काम होता है घर का भी तो, लेकिन
0: बिल्कुल
1: बाहर अगर एक कदम निकलना है तो फिर तो ये सब कुछ को छोड़ना पड़ेगा,
0: जी,
1: अगर अपन रास्ता ढूंढेंगे तो बहुत है। और
0: बिल्कुल सही बात है, नहीं
1: जी
0: तो घर
1: जी
0: के कामों को
1: हाँ
0: में ही उलझे रहो या फिर हम घर के काम के साथ साथ दूसरे काम भी कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं, अगर बाहर जाना रहे तो अपना काम पूरा सुबह
0: टाइम
1: जल्दी हो
0: टेबल,
1: जाता, टाइम टेबल रहता है,
0: हाँ घर
1: अगर अपन बाहर नहीं गए तो फिर तो वही काम अपन दिन भर
0: दिन
1: करते
0: भर
1: रहेंगे कौन
0: करेंगे।
1: सा काम, हाँ ना
0: बिल्कुल
1: समय रहेगा ना खाने का समय ना कुछ,
0: सही बात है, अगर
1: जी
0: हम बाहर जाके कोई काम कर रहे हैं तो हमारा घर के कामों का भी टाइम टेबल बन जाता
1: जी
0: है और बाहर के भी काम हो जाते हैं।
1: जी तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके, कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं शादी करने के बाद बंधन में हूँ,
0: जी
1: पूरा मैं पूरा एरिया कम से कम मैं बैतूल ब्लॉक में 70 गांव में मैं समिति सुधार का काम करी, उसके बाद में अभी मैं खेती बाड़ी में एमटी हूँ
0: जी
1: और समिति सुधार में भी एमटी हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ
0: बिल्कुल, एक
1: जी
0: महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है,
1: भी कर
0: ऐसा नहीं
1: सकती
0: है
1: है
0: कि हम गांव में रहते हैं या हम कम पढ़े लिखे हैं। काम करने वाले चाहे तो कम पढ़े लिखे रहे या गांव में रहे, अगर
1: जी।
0: जिसको काम करना है तो वो कर सकता है।
1: शादी के बाद कॉलेज किए, कॉलेज के बाद अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं और हमारी संस्था की तरफ से कंप्यूटर भी सीख रहे हैं, जो बेसिक चीज है जैसे अपना कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, कुछ दीदियां ऐसा है ग्रामीण क्षेत्र में कि जैसे अगर आय बनाना है तो सामने वाले को पैसे दे के बनाते हैं, है ना, आधार कार्ड बनाना है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हमको 500 दे दो तो हम बना देंगे, समग्र आईडी में नाम चेंज करना है तो वहां पे भी पैसे लेते हैं, हाँ
0: लोग सोचते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है।
1: पता नहीं है, तो इसके लिए भी हमको पूरा सहयोग कर रहे हैं अभी सिखाने के लिए, तो हम लोग वो सीख रहे हैं अभी कंप्यूटर में कि कैसे नाम चेंज करना है, कैसे आधार कार्ड में चेंज करना है,
0: जी,
1: तो बहुत मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि
0: हाँ
1: मैं
0: बिल्कुल,
1: इस उम्र
0: आपने
1: में सीख रही हूँ पढ़ रही हूँ, अपने के साथ में और घर का भी देखभाल करें तो मुझे बहुत
0: नहीं, बहुत अच्छा है दीदी, आप तो एक प्रेरणा ही है। शादी के बाद अपने
1: जी
0: घर के काम के साथ, घर की खेती किसानी के साथ में आप दूसरे कामों में
1: जी
0: भी अपना योगदान कर रहे हैं, और
1: जी
0: दूसरी नई नई जो चीजें हैं जो कि आजकल
1: जी
0: सभी को पता होनी चाहिए।
1: जी

0: जी, ये काम के साथ साथ आप अपने बहनों को भी जागरूक कर रहे हैं।
1: हाँ, अपने ऊपर मुसीबत आ जाए रस्ते में भी तो पूरा सहयोग करती दीदियाँ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप खेती किसानी के साथ साथ ऐसे कामों में भी जुड़े हैं और अपना मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, एक भी खेती किसानी के साथ साथ।
1: जी हाँ
0: बिल्कुल,
1: तो अब साल भर एक बार हमने बीज डाले, अब थोड़ा बहुत कम आएगा तो डालते रहेंगे, लेकिन ये अब हर महीने हर सीजन में चलते रहेगा
0: जी। तो ये जैसे आप मछली पालन कर तो रहे हैं, इसको बेचने में कोई दिक्कत होती है आपको?
1: नहीं मैम, दिक्कत तो नहीं होती, जैसे आप खाने के हिसाब से कुछ हमारे जो मछुआरे आते हैं वो लेके चले जाते हैं।
0: तो संतरी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा काम कर रही हैं आप, और आपने कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मी में भी अपना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता संतरी वाड़ीवा से मछली पालन पर, और अब चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और लोकगीत।

किसान भाइयों और बहनों, अब बातें करते हैं आज सामयिक कृषि चर्चा पर। और सामयिक कृषि चर्चा का विषय है खेत की गहरी जुताई से लाभ। किसान भाइयों और बहनों, यह तो सभी जानते हैं कि खेत की गहरी जुताई कितनी जरूरी है, और यही वह समय है जिस समय यानी ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा काम है जिससे अनेक लाभ है। ऐसा करने से मिट्टी का सूर्य ऊर्जा उपचार होता है जिससे कीट व खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। इससे खरपतवार पर नियंत्रण होता है और खेत में गहरी जुताई करने से मृदा के बहुत से भौतिक गुणों में सुधार होता है। इसमें मिट्टी में जल की मात्रा तथा जल स्तर बढ़ता है और फसल को लंबे समय तक तथा नमी उपलब्ध करवाता है। गहरी जुताई से पेड़ों को बढ़ने में मदद होती है और मिट्टी में अधिक गहराई तक पानी जाता है। अनुसंधानों द्वारा देखा गया कि गहरी जुताई से फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है और खेत में जो फसल अवशेष होते हैं जो जमीन में दब जाते हैं और जब बारिश होती है तो वह सड़कर जमीन को जीवाश्म प्रदान करते हैं। किसान भाई और बहनों, गहरी जुताई हर साल करने की जरूरत नहीं, यह 3 साल में एक बार जरूर करें। खेत की अच्छी तरह से जुताई तो हर साल करें, पूरे खेत में यह तो आवश्यक होता है। इसका एक सरल उपाय है कि संपूर्ण खेत को 3 भागों में बांटें और प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल से प्रत्येक भाग की जुताई करते रहे तथा गहरी जुताई करने से जो हमें फायदा होता है और इसमें खर्च भी कम होता है। यदि आपके पास ज्यादा खेती है तो हमें 3 भागों में बांटकर हर साल अलग अलग हिस्से की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई लगभग 9 से 12 इंच करनी चाहिए। अधिकांश किसान भाई एक निश्चित गहराई पर 6 से 7 इंच जुताई करते हैं जिससे वर्षा के कुछ समय बाद जल जमीन में न जाकर मिट्टी की सतह से ऊपर बह जाता है। गर्मी के समय में खेत की जुताई खेत की ढलान की विपरीत दिशा में करें। फसल कटाई के बाद खेत में जुताई के लिए पर्याप्त नमी होनी चाहिए, इसलिए फसल कटाई के बाद ही जुताई करें तो बहुत अच्छी तरह से जुताई होती है और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती है। किसान भाई और बहनों, गहरी जुताई करते समय खेत की मृदा के बड़े बड़े ढेले बनने चाहिए। इन ढेलों से वर्षा जल का अधिक रुकता है और पानी जमीन के अंदर जाता है जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। हल्की व रेतीली जमीन में ज्यादा जुताई न करें, इससे मृदा भुरभुरी हो जाती है और हवा व बरसात से मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है। जुताई के बाद खेत के चारों ओर एक ऊंची मेड़ बनाने से वायु तथा जल द्वारा मृदा के क्षरण की अधिक आकांक्षा हो तो वह समाप्त हो जाती है तथा खेत वर्षा जल को सोख लेता है। और गहरी जुताई से सबसे बड़ा फायदा यह है कि पहली बरसात जैसे ही होती है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन खेतों में अनायास ही आ जाता है। तो बहनों और भाइयों, यह थी कृषि चर्चा और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी, और इसमें आज का विषय है जायद में मूंगफली की खेती। श्रोताओं, हम जानते हैं कि कुछ किसान भाई जायद की खेती करते हैं जैसे गिलकी, लौकी, तोराई, मूंग, उड़द और मूंगफली, और हम मूंगफली की खेती के बारे में बातें करते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त पानी होता है वह जायद की फसल भी लगाते हैं और जायद की खेती में मूंगफली की खेती करके भी नगद मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों और बहनों, मूंगफली की खेती बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में इसमें इसका अच्छा उत्पादन होता है। यदि आप जायद के सीजन में मूंगफली की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्म का चयन करना चाहिए। जायद सीजन में मूंगफली की बुआई प्रमुख किस्म है GG20, TG37, ATGP41, GG6। तो यह थी कुछ प्रमुख किस्में और अब श्रृंखला

0: वादे खेती किसानी की यहीं संपन्न करते हैं। किसान भाइयों और बहनों, आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। अब कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय कह रहा है, कार्यक्रम समापन का समय हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी बहन सरिता शिशकर को। जय राम जी की, जय जवान जय किसान।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: किसान वाणी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी बैतूल है। रात के 8 बज चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम चित्र माधुरी।

गुलजार का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म पलकों की छांव में से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दीदार यार से ये गाना। बोल इंदिवर के हैं, आवाज है लता मंगेशकर की।

अब ये की आवाज में आप ही आपने सुनी फिल्म दस्तक से ये गाना, संगीत राजेश रोशन का। कार्यक्रम के अंत में सुनिए अलका याग्निक को। शब्द रचना निदा फाजली की है, संगीत है अनु मलिक का। ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म तमन्ना से।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्र माधुरी, ये आकाशवाणी बैतूल है।
1: सुनिए कार्यक्रम महिला जगत सोमवार से शनिवार सुबह 10:30 पर, जिसमें होगी मुलाकातें नित नए मेहमानों से सोम बुध गुरु और शनिवार को।
2: हमारी मुलाकातें हमेशा यूं ही चलती रहे।
1: साथ ही किचन टिप्स, पाक विधियां, प्रेरक व्यक्तित्व और जीवन शैली। मंगलवार और शुक्रवार को सखियों की पसंद, जिसमें आपको सुनवाएंगे आप ही की पसंद के चंद गीत।
3: पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में।
1: सुनिएगा जरूर आपका अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.1 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर।
0: यह आकाशवाणी बैतूल है, लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम युगल गीत। युगल गीत कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाते हैं गुलजार का लिखा गीत फिल्म घर से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुनी फिल्म घर से ये गाना। कार्यक्रम युगल गीत में अब लीजिए सुनिए फिल्म लव इन गोवा से ये गाना। आवाजें हैं अमित कुमार और आशा भोसले की।

अशोक मिश्रा और अमित कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म लव इन गोवा से गाना। कार्यक्रम के अंत में सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले को।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युगल गीत, यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आज रात 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष

किसान कल्याण विषय पर आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। यह आकाशवाणी बैतूल है। श्रोताओं, अब वक्त है समाचार संध्या का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त बैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि

0: अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा मशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉन न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉन के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2-3
2: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमेनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसलिए एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वही मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आहिस्ता आहिस्ता आप सुनिए इस फिल्म का गीत भूपिंदर की आवाज में। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

खयाम के संगीत निर्देशन में एक और गीत सुनिए बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर और तलत अजीज ने इस गीत को गाया है, बोल लिखे हैं मखदूम ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आपने लता मंगेशकर का गाया लिबास फिल्म का गीत सुना। भूल गुलजार के थे संगीत आरडी बर्मन का। इसी के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आइए आज बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर की।

0: नाम राजू।
1: राज कपूर की शुरुआती फिल्मों में से ज्यादातर फिल्मों में उनका स्क्रीन नेम राजू यही रहा है या राज रहा है, लेकिन इनके माता पिता ने इनका नाम रखा रणवीर राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के पेशावर शहर में इनका जन्म हुआ, पृथ्वीराज कपूर के घर में। पृथ्वीराज कपूर पहले से ही थिएटर से जुड़े हुए थे, आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और ऐसा ही कुछ करना चाहते थे राज कपूर। जब बड़े हुए तो उनका ध्यान फिल्मों में ज्यादा लगता था। कुछ लोगों का कहना है कि उस समय राज कपूर को देखकर पृथ्वीराज जी अक्सर कहा करते थे कि राज जीवन में

राज कपूर का ज्यादातर वक्त फिल्मों के इर्द गिर्द ही घूमता। अब ये सब देखकर पृथ्वीराज जी, जिन्हें की पापा जी कहा जाता था, उन्होंने उस दौर के सफल निर्देशक केदार शर्मा जी से मुलाकात की और कहा कि भाई राज बहुत कुछ कर नहीं रहा है और मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास भेज दीजिए, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। इस तरह से राज कपूर साहब केदार शर्मा साहब के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें अपना सहायक बनाकर रख लिया और वहां शुरुआती जो उनका काम था वो क्लैब दिया करते थे केदार शर्मा जी के प्रोडक्शन में। यहां से उनकी जिंदगी की जो शुरुआत है, यानी करियर की जो शुरुआत है, एक तरह से कही जा सकती है। लेकिन फिल्मों के काम में जिस तरह से राज कपूर ने मन लगाकर काम करना शुरू किया, ये देखने के बाद पृथ्वीराज जी थोड़े अचंभित हुए और फिर उन्होंने अपने किसी जानने वाले से ये कहा था कि राज फिल्मी दुनिया में बहुत शानदार काम करेगा। ये बात अलग है कि आज केदार शर्मा ने उसे मेरा बेटा होने के कारण काम दिया है, लेकिन एक दिन राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का पिता होने के कारण जाना जाएगा। ऐसी दीवानगी है फिल्मों को लेकर मेरे बेटे में। दीवान

0: करता है।
1: राज कपूर सहायक के रूप में काम कर रहे थे निर्देशक केदार शर्मा के साथ, और केदार शर्मा ने एक दिन, बल्कि क्या अक्सर, वो इस बात पर गौर किया करते थे कि राज कपूर जो हैं वो हमेशा

आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल सवारा करते हैं या अपने आप को अलग अलग एंगल से देखा करते हैं और उनसे बातचीत और उनके विचारों के जरिए भी केदार शर्मा ने ये महसूस किया कि इस लड़के में एक्टर बनने के गुण ज्यादा हैं और बस उनको समझ में आ गया कि ये लड़का एक अच्छा अभिनेता बन सकता है। बस फिर क्या था, 1947 में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो लेकर फिल्म बना दी नीलकमल। फिल्म नीलकमल में राज कपूर के साथ हीरोइन थी मधुबाला और ये सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है कि इन दोनों ही कलाकारों ने आगे जाकर हिंदी सिने संसार पर राज किया। आज भी राज कपूर और मधुबाला के बिना हिंदी फिल्मों के इतिहास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बहरहाल फिल्मों में राज कपूर की जो पारी 1947 में शुरू हुई बतौर नायक, वो कहीं ना कहीं राज कपूर के लिए भी सिर्फ एक स्टार्टिंग वाली बात थी। उनको तो पता था कि उन्हें आगे जाकर बहुत कुछ करना है और इसकी शुरुआत 1948 में ही उन्होंने कर दी। उन्होंने बतौर निर्माता, निर्देशक और हीरो फिल्म पेश कर दी आग।

फिल्म आग कई कारणों से विवादग्रस्त रही और राज कपूर की अपनी अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर सकी। लेकिन राज कपूर घबराए नहीं, 1949 में वो लेकर आ गए आग की सारी तपिश बुझाने के लिए बरसात।

बरसात अपने साथ साथ सफलता का सैलाब लेकर आई और इसी के साथ राज कपूर की एक नई टीम बनी। संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, और ये फिल्म लिखी थी रामानंद सागर ने, जो आगे जाकर बहुत बड़े निर्माता निर्देशक बने। तो फिल्म बरसात रामानंद सागर ने लिखी थी और इस फिल्म की नायिका भी नई थी निम्मी, और कैमरामैन राधु कर्मरकर। राधु कर्मरकर ये वही कैमरामैन है जो आगे जाकर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के निर्देशक बने। इसके प्रोड्यूसर भी राज कपूर ही थे। तो मैं बात कर रहा था फिल्म बरसात की। बरसात में सिर्फ अदाकारी और कहानी ही नहीं, उसका संगीत भी इतना बेहतरीन था, आज भी यूं लगता है जैसे बारिश की बूंदें टप टप टप गिर रही हों, इतना तरोताजा।

अब बात 1950 की। 1950 में राज कपूर की 6 फिल्में आई और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि 6 फिल्में एक साल में राज कपूर की 1950 के बाद फिर कभी नहीं आई। बहरहाल इन 6 फिल्मों में नरगिस, गीता वाली, सुरैया, निम्मी और रेहाना थी। जान पहचान, प्यार, दास्तान, भंवरा, सरगम और बावरे ने मुझे

ये छह की छह फिल्में सुपरहिट फिल्में रही और इन फिल्मों के सुपरहिट होने के कारण उस समय के जो दिग्गज निर्माता निर्देशक थे महबूब खान, केदार शर्मा, नितिन बोस, बिमल रॉय, महेश कौल, वी शांताराम, इन सबको कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारी टक्कर में कोई आ गया है, लेकिन फिर भी राज कपूर ने अभी वो मायार हासिल नहीं किया था, वो ऐसा खुद समझते थे और उनको लगता था कि मुझे अभी एक ऐसी फिल्म तो जरूर बनानी है कि मैं इनकी श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाऊं, और शायद उन्हें इंतजार था अपनी फिल्म

इस फिल्म आवारा की लोकप्रियता ने राज कपूर को देश ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय कर दिया। भारतीय फिल्म संगीत देश की सीमाओं को लांघकर गूंजने लगा और आज भी कई देशों में ये फिल्म अपनी पहचान बनाए हुए है। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अब बात 1952 की। बतौर नायक राज कपूर की 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई, अंबर, अनहोनी, बेवफा और आशियाना। और इन चारों ही फिल्मों में उनके साथ थी नरगिस और चारों फिल्में हिट थी।

आर जो राज कपूर की बेहद सफल हो सकती थी वाली फिल्म थी, क्योंकि आ फिल्म में ऐसी हर वो बात थी जो एक फिल्म की सफलता की गारंटी बन सकती थी, जो एक फिल्म को सफलता की सीढ़ियों पर ले जा सकती थी। लेकिन बावजूद उसके ये फिल्म राज कपूर के लिए एक आ ही साबित हुई।

राज कपूर जैसी शख्सियत के बारे में सिर्फ एक ही कार्यक्रम में सब कुछ कह देना या बता देना कितना मुश्किल हो सकता है, ये तो आप भी समझ सकते हैं।

फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन अपने हिस्से का किरदार निभाकर 2 जून 1988 को इस दुनिया के रंगमंच से विदा हो गया। लेकिन सबको सिखा गया, शो मस्ट गो ऑन।

0: कार्यक्रम के लिए प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से, स्वर शोध और आलेख अमरकांत का, और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। फिलहाल नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीतमाला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीतमाला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: हाय हाय।
4: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद।

सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम दौलत। इस गीत को सुनना चाहते थे सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, हाइशा हादिया, आसमा सालिया, मुस्ताबा राउफ और शाहिद भाई। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश दारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर और भाटापारा दत्तरेंकी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म धनवान से वो गाना जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और जिसकी धुन बनाई है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने। फरमाइश करता है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीतारानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका और वंश भट्टा ने। तो इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये गाना। फिल्म है धनवान।

गुलजार का लिखा गीत आप सुन रहे थे फिल्म सितारा से। संगीत था राहुल देव बर्मन का और आवाज आशा भोसले की थी। इस गीत को सुनना चाहते थे गंज बैतूल से हितेश जैन, हरीश आर्य, पूरन लाल रायपुरी, सलीम भाई धुआंवाला, ललित रायपुरी, दौलू सुरे और उमेश जैन, एमपी छिंदवाड़ा से रानी कामत, उदयभान ठाकरे, चंद्रभगा ठाकरे, दीपक ठाकरे, नवीन ठाकरे, शिखा ठाकरे और ग्रंथ ठाकरे। और इसी गीत को सुनना चाहता सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारस मणिबाग, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल ने। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं फिल्म रजिया सुल्तान से ये गाना, बोल जानिसार अख्तर के संगीत हयाम का और पसंद आप सबकी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा। और इसी गीत को सुनना चाहे पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज बड़ोते, बीडी बड़ोते। तो इन सब की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं ये गाना।

राठौर चौक बैतूल बाजार से संजय मालवीय, राजू मालवीय, शिवा मालवीय, प्रियन पवार, आर्यन पवार और इनके सभी दोस्त गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मेका, बलविंदर बिरक, जयदेव बिरक और मेका बिरक, ग्राम गुवाड़ी धपाड़ा शाहपुर से कुमारी हर्षा, दिशा, रीना, मुकेश आर से, कुमारी महंग, प्रियांशी, आयुष, संगीता, विनोद आर से, अंजू आर से और इनका पूरा परिवार। आप सभी ने सुनना चाहे फिल्म तुम्हारे लिए से ये गाना, शब्द रचना लक्ष्य लियालपुरी की, संगीत जयदेव का और आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का प्रोग्राम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी बैतूल है। रात के 10:30 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित जसराज का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्वरी।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना पंडित जसराज का गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है समाचारों का, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन

0: अंकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रूपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and SP Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.

0: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
1: Namaskar, thank you.
0: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
2: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग। मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हॉर्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हॉर्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया है, जो बाड़ी को जोड़ा जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है,

0: ढेर सारे से पशुपालन से भी
1: जी
0: पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खोल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा। ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा वो? एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है।
1: जी
0: तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया।
1: जी
0: और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज आउटलाइंड सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इवन इन द डिफिकल्ट ईयर्स ऑफ कोविड द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू फील हैज यू नो हिट द बुल्स आई एंड विच इज वाई वी आर सीइंग दिस बॉयंसी इन आर एग्रीकल्चर सेक्टर?
2: For over a decade, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of
1: Right.
2: Viksit Bharat. So
1: Yes.
2: when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it. And that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part. Technology plays a part,
1: Yes.
2: and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.
1: Yes.
2: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that if India's economy is going to reach the third largest economy, that
1: Yes.
2: India should be Annadata for the entire world. See,
1: Yes.
2: that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld, उनको मदद किया गया है, उनको हाथ पकड़ के खड़े होने के लिए जो भी साधन की जरूरत है वो सारी चीजें भी देते हुए भविष्य को भारत कृषि क्षेत्र में हाउ इट विल गो अहेड एंड हाउ इट विल बिकम द प्रोवाइडर फॉर द एंटायर वर्ल्ड दैट इज बिहाइंड इट. सो इन दिस ड्रीम टू सी दैट द रूरल इंडिया ट्रांसफॉर्म्स, यू हैव सीन दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इनटू अकाउंट ऑल द न्यू प्रॉब्लम्स दैट आर कमिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, देन इंश्योरिंग मार्केट एक्सेस एंड चैलेंजेस इन मार्केट एक्सेस, सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउसेस, सेटिंग अप ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल्सो रनिंग ग्रीन ट्रेन्स. Produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also the overall thing is, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming, so that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture, And

0: And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: यस मिस्टर सिंह, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की। अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा।

0: गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सकें।
1: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कॉस्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
0: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
1: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट इतना बड़ा ICR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया। और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, अब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते

0: से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की एक तरह से आज से नहीं बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य
0: कहते हैं, किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 27 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-norm, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem. Yes. Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government trust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय। जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी

0: चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया। तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं। 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपए या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानते ही नहीं थे, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: Mr. Iyer, coming to you, can you tell us that this government has always had an inclusive approach towards development in any and every sector? So if we talk about the vulnerable section, the small and marginal farmers, of course, you mentioned the PM Kisan Samman Nidhi Yojana. The very word Samman is giving respect to the farmers. Then the Fasal Bima Yojana you talked about, Kisan Mandhan Yojana is giving pension for small and marginal farmers, and nearly about 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final product. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop, more crop. That is, for every drop that is being, you know, water, that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and

0: these requires, you know, all the ministries of the government, along with the state governments, mm-hmm. they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. Mm-hmm. They have a problem of their own, a very unique problem. Mm-hmm. That is also being tackled in a different way, mm-hmm. particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. Mm-hmm. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There yes. are places that do not receive rainfall at all. Okay. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And yes. take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
0: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. Mm. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, yes. these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. Mm. You know, we've had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? Hmm. So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hai. 2014 se dekhe, to 37% bade hai humare agriculture exports. $51 billion ho gaye hai. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है सो no. so, एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है पीएलआई भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा किसान को फायदा होगा हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी एक बड़ा सेक्टर है अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशर बैन को बेहतर मूल्य मिलेगा अच्छा मूल्य मिलेगा लाभकारी मूल्य मिलेगा तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है काम उस गति से नहीं हुआ है इस सरकार का फोकस पूरा रहा है खासतौर से प्रधानमंत्री का कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा कोई भी चीज टमाटर के तो जैसे टमाटर है आलू है एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उनका सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक और जो पीएलआई जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है और पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है जिसमें 4,00,000 से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि स्कोप और भी ज्यादा है
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं सब उसका पार्ट है और इसका

0: मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा। जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है। और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण। प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशनड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड आवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज आल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज। सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward, using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to go in for high-value crops. In fact, the Prime Minister, soon after the last budget, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic zones. That is why Prime Ministers particularly mentioned, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses, and the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you
2: very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, Empowering Farmers Through Welfare and Farmer-Centric Policies. The participants were Shekhar Iyer, Political Analyst, and S.P. Singh, Senior Journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

सरकार के 12 वर्ष किसान कल्याण आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित विशेष श्रृंखला कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी का बैतूल केंद्र है। रात्रि के 11:45 हो चुके हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल की प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।